0: where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। पेश है देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम देश गान। श्रोताओं, देशभक्ति वह भावना है जो व्यक्ति को अपने देश से गहराई से जोड़ती है। यह सिर्फ तिरंगा लहराने या 15 अगस्त को नारे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की मिट्टी, संस्कृति और लोगों के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। सच्ची देशभक्ति कर्तव्य में दिखती है, जैसे टैक्स ईमानदारी से भरना, सड़कों को साफ रखना, नियमों का पालन करना और मुश्किल समय में देश के साथ खड़े रहना। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने देश के लिए अपनी जान दे दी, पर आज के समय में देशभक्ति का मतलब है अपने काम को इतनी ईमानदारी से करना कि देश आगे बढ़े। जब हर नागरिक अपने हिस्से का फर्ज निभाता है, तभी देश मजबूत बनता है। देशभक्ति दिखावे में नहीं, रोज के छोटे छोटे कर्मों में बसती है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म रोजा का गीत, हरिहरन की आवाज़ में, बोल थे पीके मिश्रा के और संगीत एआर रहमान का। अगला गीत है फिल्म लक्ष्य से, शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर, कुणाल गांजावाला और विजय प्रकाश की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: 10 लाख की लॉटरी, मुझे
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
8: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
7: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
8: तो फिर सही नंबर,
7: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
8: आपने तो बचा लिया दीदी।
7: काम से नहीं।
2: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: हो गया इंतजाम।
11: किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
12: दीदी, नौकरी लग गई।
13: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
12: हाँ दी, नया मोबाइल।
13: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
12: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
13: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
12: पर दी,
13: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
12: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
13: अच्छा।
2: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
14: तीनों कॉलेज में,
15: डोंट वरी,
14: फीस तो देखो।
16: क्या हाल है, क्या हुआ?
15: फीस की टेंशन,
16: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
17: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
16: वो कहाँ है?
17: मिठाई।
9: RBI कहता है,
1: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
18: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
8: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
13: दिमाग चार्ज कर अपना।
19: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
13: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
19: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
13: बुद्धू सुधर जा।
19: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: RBI कहता है,
1: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए सुनिए फिल्म कर्मा का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथी के स्वर में, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया फिल्म हकीकत का गीत। कैफी आज़मी के गीत को संगीत में पिरोया है मदन मोहन ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफिस से सावधान।
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए,

0: अनजान ऐप से बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: तुम्हें मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: दी, ये देख कैसे।
5: हैप्पी बर्थडे बाय।
4: दिखा हाँ, मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: दादी कौन सा प्लांट है?
10: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
11: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
9: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
11: क्यों?
9: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
11: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
9: ब्रो ये फटा है। सुन, फटे फटे है पुराने नोट को
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
9: वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
12: आइए अब सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा का लिखा गीत। फिल्म उपकार के इस गीत में आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथी की।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पुलिस?
2: मिस सीमा
4: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
9: जी,
8: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
9: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
8: पर ये होगा कैसे?
9: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
8: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
9: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
8: बस
9: बस
8: समझ गया।
9: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम पुजारी से, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और साथी की आवाज में। नीरज के गीत को संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म जागृति का गीत। प्रदीप की गीत रचना को संगीत से सजाया है हेमंत कुमार ने।

0: सके।
1: इस गीत के साथ ही देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम देशगान अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है, 9:30 होने को हैं। शब्द सागर कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।

0: भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। आज इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ।
1: मेरी कविता का शीर्षक है कविता। जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, भू पर अधर्म की अति होती, भू पर अधर्म की अति होती, तब राम अवतरण लेते हैं, भू पर अधर्म की अति होती, तब राम अवतरण लेते हैं, सीताएं तब जन्मा करती, सीताएं तब जन्मा करती, जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पर्ण कुटियों की सीताएं, जब पर्ण कुटियों की सीताएं सोने का लालच करती, तब तब रावण आ जाता है, तब तब रावण आ जाता है, सीताएं तभी हरी जाती, सीताएं तभी हरी जाती, फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है, फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है, पर क्रोच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है, पर क्रोच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है। रामायण और महाभारत साकेत और उर्वशी कथा, रामायण और महाभारत साकेत और उर्वशी कथा, यामा और हल्दी घा

0: पार्टी, नई कविता की नई छटा, नई कविता की नई छटा। करुणा की आहें आँखों में, आँखों से अश्रु बरसता हो। करुणा की आहें आँखों में, आँखों से अश्रु बरसता हो। जन्मा करती तब ही कविता, जन्मा करती तब ही कविता। जब शिवा समर में लड़ता हो, जब शिवा समर में लड़ता हो। शब्दों की धार लिए नदियाँ, जब सागर में मिल जाती हैं। शब्दों की धार लिए नदियाँ, जब सागर में मिल जाती हैं। तब महाकाव्य बन जाते हैं, कविताएं रास रचाती हैं। कविताएं रास रचाती हैं। कविता ही सीमाओं पर जब, कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है। पाकिस्तानी आतंकी जन को गोली से मार गिराती है, गोली से मार गिराती है। कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता। कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता। करुणा से क्रोध जन्म लेता, ढलता चंदा सविता सविता। ढलता चंदा सविता सविता। ऐसे जन्मा करती कविता, वैसे जन्मा करती कविता। कविता ही बन जाती कविता, कविता कविता कविता सरिता। कविता कविता सरिता कविता। कविता से जोश उमड़ता है, भर जाता बाहु बाहु में बल। कविता में जोश उमड़ता जब, भर जाता बाहु बाहु में बल। भारत माता की रक्षा हित, तन का लोहू करता कल कल। भारत माता की रक्षा हित, तन का लोहू करता कल कल। मकरंद बना करती कविता, मकरंद बना करती कविता। जय हिंद बना करती निर्भय, जय हिंद बना करती निर्भय। वंदे मातरम हुआ करती, वंदे मातरम हुआ करती। कविता भारत माता की जय, कविता भारत माता की जय। मेरी अगली कविता का शीर्षक है उठो जागो। उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है। उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है। पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए, पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए। कथाओं ने रचे रिश्ते, बहुत से धर्म बतलाए। कथाओं ने रचे रिश्ते, बहुत से धर्म बतलाए। उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली, उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली। भिखारी बन गया राजा, जनों ने राज्य श्री पाली। भिखारी बन गए राजा, जनों ने राज्य श्री पाली। नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा, नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा। महाभारत रचा जिसने, वहाँ थी कर्म की महिमा। महाभारत रचा जिसने, वहाँ थी कर्म की महिमा। कथा नायक भले हों कृष्ण, खलनायक बहुत से थे। कथा नायक भले हों कृष्ण, खलनायक बहुत से थे। कोई कम तो नहीं था पर, धनुषायक बहुत से थे। कोई कम तो नहीं था पर, धनुषायक बहुत से थे। समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है, समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है। उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है। उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है। समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा, समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा। कई युद्धों में जन को क्रांति भी करते हुए देखा। बहा जब पाप का दरिया, तभी जागृति यहाँ आई। हिलोरें ले रही जन्मे वहाँ थी क्रांति ही छाई, हिलोरें ले रही जन्मे वहाँ थी क्रांति ही थाई। उठे हुंकार ते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली, उठे हुंकार ते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली। गिरे और मर गए फिर भी, गिरे और मर गए फिर भी, विजय श्री प्राप्त कर डाली, विजय श्री प्राप्त कर डाली। दुर्गावती लक्ष्मी सदिश कुछ वीर बालाएं, समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा, समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा। परम सामान्य जन को शीर्ष पर चढ़ते हुए देखा, सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला, सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला। कई के कर्म तो बदले, कई का धर्म भी बदला, गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है, गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है। कई पीढ़ी रही मरती अनवरत निर्द्वंद बहती हो, जहां समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो, बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो, बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो। परम कर आत्मबल हम बेगवत तूफान बन जाएं, परख कर आत्मबल हम बेगवत तूफान बन जाएं, तिमिर को बेध कर हम मनुज से भगवान बन जाएं, अधेरा चीर कर हम मनुज से भगवान बन जाएं। उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शब्द सागर। कार्यक्रम शब्द सागर में लीजिए अब सुनिए वसंत सकरगाय का काव्य पाठ।
2: नमस्कार। कविता का शीर्षक है धरती का आंचल है जल। धरती का आंचल है जल और प्यास इतनी आदिम कि बुझती नहीं। धरती ने मेघों से गुहार लगाई, गुहार लगाई पहाड़ों से मैदानों से, गुहार लगाई कि खोलो नदियों के कल्ले सोते, झीलों की झिर्री खोलो, खोलो कि प्यासा न रहे जीवन, धरती पर पसरा रहे जल कि जैसे फैला हो माँ का आँचल। एक केला रखा रखा पिचक गया था, देखा कि भीतर पानी न हो और छुअन न हो पानीदार, जंग खा ही जाता है भीतर चाहे जितना हो लोहा। अगली कविता का शीर्षक है जरूरी है पहिया होना। बहुत जरूरी होता है गतिमान होना, पहिया हो जाना। बहुत जरूरी होता है गतिमान होना, पहिया हो जाना, कमीज से टूटा बटन पहिया बन, भाग नहीं पाता है इधर उधर, धर दबोच टांग दिया जाता है पुनः मजबूत, फिर पिट पिट कर खुद के टूट कर बिखर जाने पर कमीज के फटते दम तक। हिसाब किताब की सनक में, हिसाब किताब की सनक में क्षण क्षण खन खन खनकते सिक्के, वितरागी हो जाते हैं कुछ अचानक, आदमी के हाथों छिटक कर पहिया बन मुक्ति की राह पर अग्रसर। डूब जाते हैं गहरी नाली किसी सिवेज में, ओझल हो जाते हैं गहरे किसी दर्रे दरार, आदमी की उघाड़ और हिसाब किताब की खनकती सांस संभाल के कई किस्से कहानियां अक्सर मैं सुनता हूँ, भागता हूँ पीछे पीछे पहिया बन भागते हुए बटन और सिक्कों से। अगली कविता का शीर्षक है पिता सा सुंदर। वह अपने पिता से कहीं ज़्यादा सुंदर था, चॉकलेटी फिल्मी अभिनेता सा।

0: फल बोल दें तो हर्ज नहीं, ऐसे कपूल, घर से कार और कार से दफ्तर तक सब वातानुकूलित। मगर एक फांस थी जो हरदम चुभती थी उसे, कि पिता से उसके नाक नक्श यूं तो मिलते हैं बहुत ही, नमस्कार करते रहे सिर झुकाकर जीवन भर, सर्दियों में बनियान बुशर्ट और फटी स्वेटर का पीठ का हिस्सा कल लेते थे छाती पर, और बड़ी गर्मजोशी से कहते ठंड का बार कभी नहीं चलता ढकी छाती पर। गोदड़ी ज़्यादा गर्म होती है बनिस्बत तीन तीन रजाइयों के, पुराने छाते के सुराखों से अलग गिरती बारिश की धार, किंतु तर बतर पिता इस बात पर खुश रहे सदा कि कुछ न होने से बेहतर है कुछ होना, सिटी बस की पायदान पर पांव रखते रखते हर बार खुद को रोक लेते हैं और हाथों में मेथिया पालक की गड्डी लिए चप्पल फटकारते पिता घर लौट आते हैं मुस्कुराते हुए। पर उसे बार बार खोट नज़र आती है अपनी सुंदरता में, हालांकि उसे कितना तो समझाया भाई बहनों दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि कहीं वह ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से। हालांकि उसे कितना ही समझाया भाई बहन दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि वह कहीं ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से, लेकिन वह हर बार ठंडी सांस छोड़ता और कहता पपीते के बीज होता है, हरगिज़ तो नहीं हो सकता काली मिर्च का दाना।
1: अभी आपने सुना वसंत सकरगाय का काव्य पाठ। कार्यक्रम शब्द सागर में आज आपने सुने डॉक्टर विजयानंद तिवारी और वसंत सकरगाय के काव्य पाठ। इसी के साथ ही कार्यक्रम शब्द सागर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। एनिमल, इस फिल्म का गीत सुनिए राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाजों में। बोल मनोज मुंतशिर के हैं और संगीत है जैम 8 का।

शाश्वत सचदेव, शहजाद अली और साथियों की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म धुरंधर का गीत। बोल इरशाद कामिर और साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत है शाश्वत सचदेव और रोशन का।

0: की पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: राघव, तनिष्क बागची और असीस कौर की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का गीत। गीत तनिष्क बागची का है और संगीत है राघव और तनिष्क बागची का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फाइटर फिल्म का गीत, विशाल ददलानी, शेखर बेनीदयाल और शिल्पा राव की आवाजों में। कुमार के बोल हैं और संगीत है विशाल शेखर का।

0: होता है। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर शरद बाघेला। इन दिनों मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। आगर मालवा जिले में भी पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह का सीजन होने के कारण बाजारों में भीषण गर्मी के बावजूद चहल पहल दिखाई दे रही है। दिन के समय बाजारों सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं लोग अपने जरूरी बाजारों के कार्य सुबह शाम करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगर मालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने गत दिनों सर्किट हाउस में आयोजित हुई विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े सभी कार्यों को अधिकारी प्राथमिकता से पूरा करें। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आगर मालवा प्रवास के दौरान बड़ोद चौराहे से पाल रोड तक 98.34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अपने प्रवास के दौरान मंत्री द्वय ने जिले के सुसनेर में नगर परिषद के नवीन भवन का फीता काट कर लोकार्पण किया। आगर मालवा जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में रबी फसल, विशेष रूप से गेहूं कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलवाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि पर अवशेष जलाने पर 2500 रूपए, 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5000 रूपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रूपए प्रति घटना के दर से राशि वसूली जाएगी। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूर्ण करने वाले प्रगणकों का गत दिनों आगर मालवा SDM कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में SDM व तहसीलदार व जनगणना चार्ज अधिकारी ग्रामीण द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों आशा पालीवाल, किरण नागले, सोना सोनगरा, कालूराम मेहर और प्रेम सिंह यादव को सम्मानित कर उनके कार्य की सराहना की। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में आगर मालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 42 केंद्रों पर की जा रही है, जहां 20,843 कृषकों से 13,617 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही कृषकों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगर मालवा में 69.42 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन 2 औद्योगिक क्षेत्रों में 394 औद्योगिक प्लॉट विकसित किए गए हैं, जिसमें 175 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होने पर जिले में लगभग 550 करोड़ रुपए के निवेश और 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध होगा और बड़े शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी और साथ ही परिवहन, होटल, खानपान, मरम्मत व अन्य सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आगर मालवा जिले में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले हड़ाई डैम का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक मधु गहलोत ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। आगर मालवा जिले के सुसनेर स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाते हुए प्रयोग करके दिखाया गया कि किसान अपने कृषि योग्य भूमि की मिट्टी का परीक्षण स्वयं करके उसकी उर्वरकता क्षमता के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले की चयनित छात्रा ख्वाहिश गवली ने नागालैंड का भ्रमण कर

0: परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझा और मध्य प्रदेश की संस्कृति का भी परिचय कराया। आठवें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत कुपोषण के कारण पहचान एवं रोकथाम विषय पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए जागरूकता व्याख्यान में वक्ताओं ने कुपोषण के प्रमुख कारणों, उसके लक्षणों की पहचान और उससे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संतुलित आहार, स्वच्छता और जन जागरूकता को कुपोषण से निपटने के प्रमुख उपाय बताए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का था और वाचन स्वर शरद बाघेला का। आकाशवाणी का ये भोपाल के
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं जगजीत सिंह के गाए कबीर दास के भजन से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पेश है नितिन मुकेश का गाया कवि नारायण अग्रवाल का भजन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी रीवा है, 11 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की है।
1: नमस्कार, बात आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमारे हाथों में एक नया दिन रख देती है, लेकिन उसे शिकायतों से भरना है या शुक्रिया की रोशनी से सजाना है, ये चुनाव कहीं न कहीं हमारा अपना होता है। कभी हम उन चीजों के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, और कभी एक छोटी सी खुशी भी मन को इतने संतोष से भर देती है कि जीवन सुंदर लगने लगता है। सच तो ये है कि सुख केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस दृष्टि में छिपा होता है जिससे हम अपने जीवन को देखते हैं। शिकायतें धीरे धीरे मन की मिठास छीन लेती हैं, रिश्तों में अनकही दूरियां भर देती हैं, और फिर घर परिवार दोस्त सबका साथ होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसी जीवन को जब हम शुक्रिया कहकर स्वीकारते हैं, जब हम आभार के भाव से भरते हैं, तो साधारण दिन भी उत्सव जैसा लगने लगता है। सच तो ये है कि जिसे जो मिला उसने उसी से अपना संसार बना लिया, किसी ने कमी गिनी और किसी ने कृपा। तो आइए आज इसी विषय पर कुछ दिल की बातें करते हैं। आज का विषय, शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं? आप अपनी जिंदगी में किन बातों के लिए ईश्वर, समय, अपनों या जीवन को शुक्रिया कहना चाहेंगे? क्या है आपके संतोष का आधार? कौन सी छोटी सी बात, कौन सा रिश्ता, कौन सी याद या कौन सा अनुभव आपको भीतर से संतोष से भर देता है? और क्या आपको लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है? तो आज इस कार्यक्रम में अपने अनुभव, अपने एहसास और अपने मन की बात साझा कीजिए हमसे। नमस्कार, बात आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
2: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, ग्राम सिरवा बांधा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं?
2: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
1: और बिल्कुल समय का ध्यान रखकर आपने फोन किया है।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: ये बहुत जरूरी है, हमारे सभी श्रोताओं को ये चाहिए कि वो समय का ध्यान रखकर एक हफ्ते के बाद फोन करें। तो योगेश जी,
2: शिकायत करने का मौका ही नहीं देंगे।
1: बहुत अच्छी बात। तो योगेश जी, हम आज का विषय बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में आप किसके साथ हैं, शिकायतों के साथ या शुक्रिया के साथ। अक्सर मन में लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, अपने अभावों को, अपनी कमियों को हम बहुत देखते हैं। लेकिन हर जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए इंसान शुक्रिया कह सके। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं और किस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे आप?
2: हमारा जीवन ज्यादातर शुक्रिया पर ही मतलब अभी तक गुजरा है। अक्सर लोगों को हम शिकायत करते सुनते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे नजरिए पर निर्भर करता है।

0: कि हम किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलेगी और उस तरह से हमारा मानसिक स्थिति होगा। तो जो चीजें नकारात्मक होती है या जो हमारे से थोड़ी दूर होती है उनके बारे में उतना ना सोचें।
1: बिल्कुल,
0: जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी को शुक्रिया में गुजारे तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुक्रिया कहने का मतलब तभी आता है कि जब हम या तो सामने वाले का मदद कर दे या सामने वाला हमारा मदद कर दे, तो ये सबसे अच्छी चीजें होती है।
1: बिल्कुल, जो कुछ हमें जिंदगी में नहीं मिला है उसकी शिकायत करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जो मिला है वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, है ना?
0: बिल्कुल, मानव जीवन जैसे हमें मिला है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। माता पिता है, पूरा परिवार है, इससे बड़ा एक इंसान के लिए कोई सौभाग्य की मतलब बात नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल, तो आज हम जानना चाहते हैं योगेश जी कि एक कोई ऐसी बात आप बताएं जिसके लिए आप, या जितनी बातें आप कहना चाहें, किस बात के लिए आप दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं जिंदगी को?
0: जिंदगी को दिल से शुक्रिया तो इसी बात के लिए कहना चाहेंगे कि हमारा पूरा भरा परिवार है और अभी तक के 35 साल के जीवन में हमें कभी मतलब दुखद या फिर कह सकते हैं जिंदगी से उस तरह से कोई शिकायत नहीं है।
1: क्या बात है! देखिए, आज जबकि बहुत से इंसान ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हर पल शिकायत होती है और इसकी वजह से उनके घर का पूरा वातावरण भी खराब होता है, जिंदगी भी खराब होती है, कई बार शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं, बीमारियां आ घेरती हैं इस नकारात्मक भाव में रहते रहते। लेकिन आप कह रहे हैं
0: जी जिंदगी से जितना चाहे है उनसे दोगुना ही मिला है।
1: क्या बात है! तो सोचना चाहिए कि जो कुछ मिला है उसको भी हम सेलिब्रेट करें, है ना? जो कुछ मिला है वो कम नहीं है, बहुत कुछ मिला है और का हम प्रयास कर सकते हैं खुशी के साथ, मेहनत के साथ, लेकिन जो मिला है उसे सेलिब्रेट करना ना भूलें।
0: जी।
1: तो योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम नमस्कार।
1: जी। नमस्कार दीदी, मैं दादू भाई कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ दीदी।
0: रोशन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस
1: जी
0: कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं?
1: जी दीदी, शुक्रिया के साथ रहूंगा मैं
0: अच्छा, तो किन बातों का शुक्रिया कहेंगे?
1: जी। मैं तो भगवान को, मतलब ईश्वर को यही शुक्रिया कहूंगा कि हमें, मतलब, इंसान के रूप में जन्म दिया है। मतलब इंसान का जन्म बहुत यूनिक के बात कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिलता
0: बिल्कुल,
1: है। जी
0: बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना?
1: जी जी जी जी जी
0: तो पहला धन्यवाद तो इसलिए कि मनुष्य के रूप में आपको ईश्वर ने जन्म
1: जी
0: दिया। और
1: जी
0: किन-किन
1: जी
0: बातों
1: जी
0: का संतोष है जीवन में आपको? अक्सर हम
1: और दीदी मुझे सारी बातों का संतोष है, लेकिन एक चीज से मैं कहना चाहूंगा कि मैं, मतलब, पढ़ाई नहीं कर पाया।
0: अफसोस है
1: जो
0: आपको कि आप पढ़ाई
1: जी
0: नहीं कर सके,
1: जी जी
0: लेकिन
1: अफसोस भी
0: देखिए।
1: है। जब 2 साल का था तब मुझे माइंड वाला, दीदी जी, बुखार हो गया था, तो डॉक्टरों ने, मतलब, पढ़ाई के लिए मना किया था कि पढ़ाई न कराना, नहीं आंखों की रोशनी चली जाएगी।
0: अब तो ठीक हैं आप?
1: जी अभी तो दीदी ठीक है, आप, मतलब, पूरा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन,
0: हाँ,
1: मतलब, पढ़ाई करने में दिक्कत होती तो पढ़ाई नहीं इसलिए करते दीदी।
0: लेकिन आजकल देखिए पढ़ने के भी बहुत तरीके हैं, सीखने के बहुत तरीके हैं, है ना? सुनकर बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, है ना? तो आप जो कुछ जानना चाहते हैं वो सुनकर कीजिए, ऐसे बहुत से
1: जी।
0: साधन
1: और
0: हैं।
1: अभी रविवार को हमने मदर्स डे मनाया है, तो मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी माँ को कि हमें, मतलब, जीवन, इतना अच्छा जीवन दिया है उन्होंने।
0: देखिए, यही एक बात कि माँ साथ है, माँ ने इतनी अच्छी परवरिश दी, इस बात का भी शुक्रिया हो सकता है ना? बिल्कुल, होना ही चाहिए।
1: किसी किसी की तो दीदी माँ भी नहीं होती साथ, तो उनको भी बहुत दुख होता है और हमें भी।
0: जी, तो रोशन सिंह जी, कहने का अर्थ यही है कि जीवन जो है वो नजरिए की बात है, वस्तुओं में, उपलब्धियों में, चीजों में सुख नहीं है। आपका नजरिया ही जो है वो आपको सुखी या दुखी करता है, संतुष्ट या
1: सुखी और
0: असंतुष्ट
1: दुखी में
0: करता है।
1: नजरिए का बहुत अंतर है दीदी जी,
0: जी,
1: पूरा ही, मतलब।
0: तो शिकायतों के साथ नहीं, आप जीवन को शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ें, हमारा यही आज आपसे कहना है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।
1: जी दीदी नमस्कार, मैं सुनीता दीदी बोल रही हूँ, आप नाम जा सकता हूँ थोड़ा।
0: जी, सुनीता बोल रही हूँ।
1: जी दीदी नमस्कार, मैं आपको
0: नमस्कार,
1: वतन का राग में सुनता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से
1: नमस्ते
0: रेडियो से जुड़े रहिए और
1: जी
0: हमें
1: जी
0: फोन करते रहिए। बहुत
1: जी जी
0: शुक्रिया।

0: बात आपकी, गीत हमारे। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बताइए
1: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के सारण सेवा में आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश जी।
0: संतोष कुमार राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम आज ये जानना चाहते हैं, जो विषय है वो आपके नाम से जुड़ा हुआ सा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जीवन में कई बार हम बहुत सी बातों को लेकर असंतुष्ट होते हैं और शिकायतों से भर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको संतोष देती है? आप शिकायतों के साथ हैं जिंदगी में या शुक्रिया के साथ हैं?
1: जी, हमें हर बातों का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ ने जन्म दिया है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेड़ हमें छांव देते हैं, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हवाएं हमें वायु देती है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जल हमें नीर देता है, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीवन को शुक्रिया अदा करते ही अगर जाएंगे तो जीवन में संतुष्टि पाएंगे, और संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख होता है, संतोष का कारण होता है। तो विनम्र बनेंगे तो सहजता ही सरलता का भाव आता है, मन में ख्याल आता है, और विचारों को भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं।
0: क्या बात है। तो दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन बोझ नहीं सुंदर लगने लगता है ना। और आपने बहुत अच्छी बात की कि कितनी बातों का हम शुक्रिया कह सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर हमारे पास है, माँ ने जन्म दिया, परिवार ने हमें पाला पोसा, इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं, हम चलने के काबिल हैं, बोलने के काबिल हैं, हम सुन सकते हैं, बहुत से उपहार हमें ईश्वर ने दिए हैं, है ना। और आपने प्रकृति की भी बात की है, बहुत अच्छा लगा संतोष जी। और इस तरह की जब एक दृष्टि होती है तो हमारा जीवन जो है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हम शिकायतों से नहीं भरते, हम हर बात के लिए आभार करते हैं, शुक्रिया करते हैं, और कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं। और जो कृतज्ञ जीवन होता है वो हमेशा आनंदित होता है।
1: जी बिल्कुल मैम, और बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम होता है कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। सभी प्रसारण सेवा के जो कार्यक्रम आते हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं, और आपकी प्रस्तुतियां बहुत खास होती है। जितने भी पुराने हमारे अनाउंसर रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देते हैं। आप सभी की योगदान के लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा बहुत बहुत करते हैं मैडम, क्योंकि इतनी अमूल समय निकाल करके आप हमसे बातें करते हैं और इतने कार्यक्रमों को आप प्रसार करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।
0: क्या बात है, आप हमारे प्रसारण के लिए हमें शुक्रिया कह रहे हैं। देखिए ये भी एक बात हो सकती है, एक नया ही दृष्टिकोण आपने दिया। बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद
1: जी मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, बात आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: जी जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: जी जी, मैं तो आज धन्य हो गया मैम जी कि आप उपस्थित हैं और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं कि की मेरे विचारों की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो तक पहुंचे और श्रोताओं तक पहुंचे।
0: क्या बात है।
1: तो मैम जी, मैं अपना परिचय दे देता हूं सबसे पहले। नियमित श्रोता जय नरसिंह एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के से कमलेश कहार बोल रहा हूं जी।
0: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार रेडियो सुनते हैं और बिल्कुल ध्यान से पूरे 7 दिन के बाद फोन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपका हम आभार करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: थोड़ी सी मैम बस एक बात और रख लूं, जैसे तो मैं सुन लूंगा मैम जी, वो तो सुनना जरूरी है, जैसे के अनुकूल ही बोलूंगा। यही कि श्रोताओं से निवेदन है, आग्रह, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कम से कम 8 या 9 दिन के पश्चात ही आप फोन लगाएं।
0: क्या बात है। तो कमलेश जी, आपके संदेश से हमारा मन खुश हो गया है, आपका आभार करते हैं कि हमारी तरफ से आपने ये बात कह दी है, बहुत शुक्रिया। आज का विषय जो है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि जीवन में आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ, किन बातों का आभार करना चाहेंगे आप?
1: ये भी अनुकूल बात है मैम जी कि हमें शुक्रिया का अपनी जगह करने चाहिए जो हमारे पास है। जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास एसी नहीं है, तो बहुत से लोग एसी के लिए आतुर हैं आज, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो है जितना है, कैसे है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
0: क्या बात है, क्या बात है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो बहुत अधिक शिकायत से भरना ये जीवन को खराब कर देता है। तो कमलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसी कौन सी याद है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपको ऐसी कौन सी बात है जो संतोष से भरती है?
1: देखिए मैम जी, मुझे अपनों का साथ रोजी है, उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ा अपनापन जो है, मैं रेडियो के माध्यम से अपनापन समझता हूँ, तो रेडियो मेरे साथ है, मैं रेडियो के रोजाना उसके साथ हूँ। और आप जैसे उद्घोषक हमारे बीच है, तो ये भी एक शुक्रिया का या धन्यवाद का या आभार का, आभार की स्थिति बनती है। अपनों का साथ यदि रोजीना आपके साथ है, इससे बड़ा धन्यवाद या इससे बड़ा आभार किसी के लिए हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास जीवन की बहुत सी उपलब्धियां हो लेकिन कोई अपना ना हो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए, तो सारी खुशियां बेमानी हो जाती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मन की बात कह दी, मैं यही कहने वाला था कि यदि हम उत्साह उमंग या खुशी मनाते हैं और ये अपना साथ ना हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें पीस पहुँचती है मन में, हृदय जरूर यह बात खलती है कि अपना कोई होना था तब हम उसके साथ अपनी बात रख पाते या खुशियां मना पाते।
0: जी जी,
1: तो
0: जी,
1: मैं समझता हूँ कि जीवन हमारा है या रिश्तेदार है या जो भी अपनेपन है, सभी के साथ उत्साह उमंग के साथ रहें और आभार रोज ही ना उनका करते रहें।
0: जी, और कहा जाता है कि जो हर बात के लिए आभार करता जाता है, जीवन में जो कुछ उसको प्राप्त है उसके लिए जो आभार करता जाता है, उसको प्रकृति की ओर से और बहुत कुछ मिलता जाता है। आप जितना संतुष्ट होते जाते हैं उतनी प्राप्ति और होती जाती है, तो इस वजह से भी आपको बहुत संतुष्ट होना चाहिए।
1: जी जैसे मैं सुबह उठता हूँ रोजीना, मेरा स्वभाव बन

0: तो कहा कि धरती माँ को शरण स्पर्श करना, जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी माता की जय हो, आभार करता हूँ उनका रोज ही नया सा नाम लेकर के, चंद्र देवता, सूर्य भगवान, जो हमारी संस्कृति कहती है, उन सभी का आभार करता हूँ कि मुझे आज के लिए आपने तैयार किया, मैं अब रोजी रोटी से लग जाऊँ।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने कमलेश जी, कि आप प्रकृति का आभार करते हैं, सूरज चांद धरती आसमान का आभार करते हैं कि एक और नया दिन हमें मिला है जीने के लिए और हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ें, इस बात का शुक्रिया करते हैं। क्या बात है, मन खुश हो गया ये बात सुनकर।
0: बहन जी, ये शब्दों तक सीमित नहीं है, मैं सुबह में ही लाया हूँ। जी जी, शायद सुना पड़ी हो, कोयल मेरे बीच में है।
1: जी जी जी, कोयल ने आपके स्वर से स्वर मिलाया है और उसने सहमति दी है कि कमलेश जी सही कह रहे हैं।
0: पेड़ लगे हैं आम के, मैम जी अम्मियाँ लगी हैं, आम भी हो गए हैं, आंधी तूफान सबका आनंद ले रहे हैं।
1: क्या बात है, तो चलिए कमलेश जी, इसी तरह संतोष के साथ जीवन को खुशी खुशी आप बिताइए और आकाशवाणी का साथ बनाकर रखिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। अंततः यह कहूंगा कि पूरी टीम को आभार धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहते, मैं हर बार यही कह देता हूं, क्योंकि उनको आभार करना हमारा दायित्व बनता है, सभी श्रोताओं का दायित्व बनता है जो हमें आवाज के माध्यम सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन उनके माध्यम से आवाज जरूर हमारे तक आ रही है।
1: जी जी जी बिल्कुल, तो हमारी पूरी टीम तक आपका आभार पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं, नमस्कार
0: जी, धन्यवाद जी।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार, मैं दशरथ सिंह बोल रहा हूँ, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर से।
0: दशरथ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने हमें फोन किया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के विषय पर आप बहुत अच्छा एक कोई विचार रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिंदगी में किन बातों के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं? आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ हैं? आपको क्या लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है या वस्तुओं में, चीजों में छिपा होता है?
1: जी बिल्कुल, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुख का, और शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी से भी शिकायत नहीं है। हमारे पास अपना जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी हाथ पैर पांव सब ठीक है, और मम्मी पापा हमारे साथ हैं। शाम का खाना, सुबह का खाना, दोपहर की चाय, हम सब साथ में बैठकर पीते हैं, इससे सुख और क्या हो सकता है।
0: क्या बात है, परिवार का साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है, भोजन की व्यवस्था है।
1: गरीबी और अमीरी, ये दुनिया का और संसार का नियम भी है, परिवर्तन का नियम है। लेकिन अपने पास स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, अपना जो शरीर है उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, हाथ पैर बिल्कुल स्वस्थ है, सलामत है, और मम्मी पापा साथ में है, बच्चे बच्चियां हैं, मिसेज हैं, परिवार है, दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही है, सभी कस्टमर आते हैं, वो सब सब कुछ चल रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे सबसे और खुश नहीं हो सकती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है दशरथ जी, के परिवार का साथ है, भोजन की व्यवस्था है, माता पिता का आशीर्वाद है, और आपका जो रोजगार है, रोजी रोटी, उसका काम बढ़िया चलता है, तो ये जरूर है कि आप और अच्छे का प्रयास करते होंगे, लेकिन जो है उसका संतोष जरूर है। जी
1: जी जी, हमने ये बात भी देखी है कि बहुत सारे के पास अथा पैसा है, लेकिन उनके पास बिल्कुल शांति नहीं है, वो खाना नहीं खा सकते हैं, किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है, कोई गरीब आदमी आएगा तो उनको ऐसे ही टाल देते हैं कि इससे क्या बात करेंगे, अपना समय ऐसे ही जाया करा जाएगा, तो एक काम करते हैं, पैसे में लगे रहते हैं, हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, हम व्यवहार के पीछे भागते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए संतोष का बहुत सा अवसर और बहुत सी चीजें जीवन में उपलब्ध हैं, देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, है ना? हमारे जीवन में ईश्वर ने हमको ऐसा बहुत कुछ दिया है, ऐसी अनेक परिस्थितियां जिसके लिए हम आभार कर सकते हैं, जिसका कि आपने जिक्र भी किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा दशरथ जी कि आपने एक बहुत सुंदर संदेश दिया इस कार्यक्रम के जरिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण निरंतर ऐसे ही दिन रात हम तक पहुँचता रहे, जैसे की आकाशवाणी को सुनते हुए एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है।
0: जी,
1: तो ये मेरे हिसाब से कि जो कस्टमर और सुन रहे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, जो श्रोता बंधु हैं, मैं चाहता हूँ कि ये 90 साल का जो हमारा आकाशवाणी का सफर रहा है, हमारे से पहले भी चलता आ रहा था, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसको समझना चाहिए कि आकाशवाणी क्या हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: आकाशवाणी क्या होती है।
0: बहुत अच्छी बात, तो आकाशवाणी से ये प्रेम बनाकर रखिए, आपके जरिए ये भी संदेश पहुंच रहा है कि आकाशवाणी, आप जो आने वाली पीढ़ी है वो भी रेडियो से जुड़े। बहुत अच्छा लगा दशरथ जी,
1: और कहते हैं कि जहां न पहुंचे प्राणी वहां पहुंच गई आकाशवाणी।
0: बहुत अच्छी बात, तो दशरथ जी आपने हमें आज फोन किया, आपका हम आभार करते हैं, शुक्रिया कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते खमागणी।
0: नमस्ते खमागणी, कौन बोल रहा है?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
0: मोहनलाल प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैडम। और हमारे यहाँ तो गर्मी का मौसम बहुत खतरनाक है।
0: गर्मी खतरनाक है ही इस साल, तो बहुत बचकर रहना होगा और पूरी सावधानियां बरत कर ही गर्मी के मौसम में बाहर निकलिएगा। फिलहाल जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम जानना चाह रहे हैं कि जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको संतोष होता है। बहुत से लोग जीवन में शिकायतों के साथ रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, मेरे जीवन में ये कमी है। तो हम आज जानना चाहते हैं कि जो है आपकी जिंदगी में, किस बात के लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे जिंदगी को?
1: भगवान की मेहरबानी से एक लड़का है, तो वो मेरी मतलब मुराद पूरी हो गई। और दो बच्चियां हैं, जो एक शादीशुदा है और एक छोटी है, तो मेरी मुराद पूरी हो गई है। और वो एक भगवान की मेहरबानी से एक बच्चा है, तो वो भी अपने काम पर व्यस्त है। तो मतलब मेरे मन की मुराद पूरी हो गई और मैं संतुष्ट हूँ।
0: संतुष्ट हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं आपको ये लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो योग्य हैं और एस्टैब्लिश्ड हैं, इसलिए आप संतोष करते हैं और आभार करना चाहते हैं ईश्वर का? और कौन सी बात है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे? कई बार शिकायतें होती हैं लोगों को बहुत कि जिंदगी में ये नहीं है, अभावों पर बहुत हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जो हमारे पास
1: मैं मेरे शरीर से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं नशा करता नहीं हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। भगवान की मेहरबान से खुद धंधा कर लेता हूँ और संतुष्ट हूँ। भगवान की मेहरबान से धंधा भी अच्छा है।
0: जी जी, तो आप स्वस्थ हैं इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं और ये बड़ी बात है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन कहा गया है स्वास्थ्य को, है ना? तो सबसे बड़ा धन जब आपके पास है, आप स्वस्थ हैं, तो जीवन का सारा आनंद आपके पास है। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है जिंदगी को, है ना? तो मोहनलाल जी, आज आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ, मैं अनूपपुर से।
0: आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप, शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ? ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, खुशी है और आप शुक्रिया कहना चाहते हैं?
1: देखो मैम, शुक्रिया जरूर हमें किसी की, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, कोई हमें अच्छा कोई कर रहा है तो हम जरूर भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी,
0: जिंदगी आपके साथ जो व्यवहार कर रही है, जिंदगी ने आपको जो दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बात जिंदगी से आपको मिली है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मेरे हमारे जीवन में जरूर ऐसे कई बस ऐसे बातें आए हैं जिसको हम लोगों को शुक्रिया अदा किए हैं, ऐसे बात नहीं है। जी,
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
0: अच्छा, तो देखिए आपके पास एक नौकरी है, इस बात का शुक्रिया कर सकते हैं आप, है ना?
1: जी
0: बहुत से
1: बिल्कुल,
0: लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है,
1: जी जी
0: है ना? इसी तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। घर में, घर परिवार में कौन है आपके?
1: घर पर में मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है।
0: और सभी लोग
1: जी
0: स्वस्थ हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: सभी
1: स्वास्थ्य
0: लोग खुश
1: स्वास्थ्य
0: हैं, इस बात का
1: जी
0: शुक्रिया हो सकता है ना?
1: बिल्कुल हो सकता है। और एक शुक्रिया एक अदा है, एक और होता है शुक्रिया, जैसे मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करके मेरे को मतलब नौकरी पे रखा, तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया अपने बॉस को।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: दोस्त को भी शुक्रिया, ईश्वर को भी शुक्रिया। तो इस तरह से एक नज़रिया जब हमारा होता है ज़िंदगी में कि जो कुछ हमें प्राप्त है उसको भी हम कभी सेलिब्रेट करें, है ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: अच्छे
1: बिल्कुल
0: के लिए हम प्रयास ज़रूर करें, जो कुछ कम है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। किसकी ज़िंदगी में कमियां नहीं हैं? हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी बात की कमी है। जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास हो सकता है कि समय की कमी हो सकता है कि परिवार की कमी हो, है ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: तो चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास एक अच्छी सी नौकरी है, घर परिवार है और सभी स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी को सकारात्मक भाव के साथ देखिए और बहुत खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम है ये, हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
1: मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह शाक्य है, मैं टैक्सेशन असिस्टेंट हूँ मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत SGST डिपार्टमेंट में।
0: चंद्रशेखर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले भी फोन किया है आपने?
1: नहीं मैम,
0: पहली बार फोन किया है। तो इस तरह से आप हमारे नए श्रोता हुए, तो विशेष स्वागत आपका। और अब हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: मैडम, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन रहते हैं वो ऐसा मानिए कि अगर वो नहीं होंगे तो हमें छोटी छोटी खुशियों का कभी पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल होना या नेगेटिव फेस आना बहुत जरूरी होता है, उससे आदमी बूस्ट भी करता है
0: जी।
1: परिवार के साथ में उसकी बॉन्डिंग भी बनती है, बहुत सारी चीजें अच्छी है।
0: जी जी, तो ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, जिसके लिए आप जिंदगी को शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: मैडम, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपने परिवार के प्रति काफी संतोषजनक हूँ, उनकी बहुत केयर करता हूँ, वो मेरी बहुत केयर करते हैं।
0: एक अच्छा परिवार है आपके पास, है ना?
1: जी मैम।
0: जी जी, तो देखिए, जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दृष्टिकोण की बात होती है। जो संतोष और सुख है वो वास्तव में हमारे नजरिए की बात है। तो चंद्रशेखर जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे नए श्रोता हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे नियमित श्रोता रहें, लगातार हमें फोन कीजिएगा, बस इस बात का ख्याल करके कि एक सप्ताह के अंतराल के बाद ही आप दोबारा फोन करें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: शिवम सिंह।
0: कहाँ से बोल रहे हैं शिवम जी?
1: शहडोल, मध्य प्रदेश।
0: शिवम जी, आप हमारे नए श्रोता हैं शायद।
1: जी,
0: पहली बार फोन लगा है आपका।
1: हाँ हाँ,
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम शिवम जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। तो क्या कहेंगे आज के विषय पर आप?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, रहते हैं मेरी पूरी फैमिली एंड आयरिंग माय एल्डर ब्रदर्स, माय पेरेंट्स, सारी चीजें सब लोग। एंड जो क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी जगह आपको ऐसी चीजें होती हैं कि आपको गाइडेंस की जरूरत होती है।
0: जी जी जी
1: तो वहाँ पे बहुत अच्छी मेरे जो बड़े भाई लोग हैं और जो मेरे और पेरेंट्स हैं, वो सारे लोग मुझे बहुत अच्छा गाइड और सपोर्ट करते हैं वहाँ पे।
0: क्या बात है।
1: सेकेंडली,
0: जी,
1: आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर माई जॉब और जॉब ऑन हैविंग और अभी जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे सीनियर्स मुझे मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ने में लाइफ कोचेस भी, एज अ लाइफ कोच भी गाइड करते हैं, एज अ कंपनी कोच भी गाइड करते हैं।
0: क्या बात है। तो शिवम जी, आप बहुत खुश हैं कि एक बहुत अच्छा परिवार आपके पास है जो आपका मार्गदर्शन करता है और सपोर्ट करता है जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, और ऐसा ही आपका कार्यक्षेत्र भी है। तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी में सुख जो है वो वास्तव में वस्तुओं से होता है, चीजों से होता है, या हमारे नजरिए की बात है सुख?
1: नजरिए का होता है, क्योंकि सबकी लाइफ, सबके देखने का तरीका अलग होता है। किसी को मटेरियल हैप्पीनेस होती है, किसी की मटेरियलिस्टिक होती है, किसी को चीजों में खुशी मिलती है, किसी को फैमिली में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में मिलती है। मुझे फैमिली में ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज अगर आपके पास चीजें नहीं भी हैं बट आपके पास एक अच्छा परिवार है, कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको आपके जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपका साथ दें, तो जिंदगी आसान लगती है।
0: बिल्कुल। और नजरिए की बात मैंने इसलिए की कि एक गिलास की हम बात करें कि एक गिलास अगर आधा भरा है तो उसे दो तरह से देखा जा सकता है। कोई कह सकता है कि ये गिलास आधा भरा है और कोई ये भी कह सकता है कि ये गिलास आधा खाली है। तो ये दृष्टिकोण की बात है ना। तो हर जीवन में कमी तो होती है। अगर हम सिर्फ कमियों को लेकर शिकायतों से भरते हैं तो फिर बात बनती नहीं, जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती है, गुणवत्ता उसकी खराब हो जाती है ना
1: जी।
0: तो शिवम जी, आपने आज हमसे बात की, हमें फोन किया और अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

प्रियों श्रोताओं, जीवन शायद कभी पूरी तरह शिकायतों से खाली नहीं होता, लेकिन यदि मन में शुक्रिया के कुछ दीप जलते रहें, तो अंधेरे उतने घने नहीं लगते हैं। कभी किसी अपने का साथ, कभी किसी अनजान की मुस्कान, कभी सुबह की धूप, तो कभी कठिन समय में मिली छोटी सी उम्मीद। जीवन हर दिन हमें कुछ न कुछ ऐसा देता है जिसके लिए ठहर कर धन्यवाद कहा जा सके, आभार किया जा सके, शुक्रिया कहा जा सके। शिकायतें मन को थका देती हैं, लेकिन कृतज्ञता मन को शांत करती है और यकीनन संतोष का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इसी सोच और इसी सकारात्मक भावना के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। आप मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ महसूस करते रहिए और जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए दिल से कहते रहिए शुक्रिया। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक

नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे।

₹50 की राशि अंतरित होगी। प्रदेश में 1 जुलाई से विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे वर्ष भर में 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका प्रभाव हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहराई से पड़ता है। और भागदौड़ वाली इस जिंदगी में संगीत एक थेरेपी की तरह है, और ये थेरेपी अगर आपके पसंद की हो तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की संगीतमय थेरेपी, वो भी आपकी पसंद की, कार्यक्रम आपकी फरमाइश के इस पहले गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बेमिसाल से। लता मंगेशकर की आवाज को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। इंदौर मध्य प्रदेश से विजय अनिल, नेहा फड़से, सीमा, कमल, पूजा, सुषमा और सुनील। साथ ही औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेमिसाल का ये गीत।

जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी चंचल और अर्जुन। आप सभी की पसंद है फिल्म अभिलाषा का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है तीसरी कसम और गायक कलाकार हैं अमित कुमार। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने।

सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, आप सभी ने फरमाइश की है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म धनवान के इस गीत को सुनने की, जिसे लिखा है साहिर ने और संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सभी की। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार ने

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 12:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करते हैं। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने, सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी,
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 12वीं कड़ी।
3: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 12वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी, नसीहतों का दफ्तर का नाट्य रूपांतरण। बाबू अक्षय कुमार पटना के जाने माने वकील थे। बड़े वकीलों में उनकी गिनती हुआ करती थी। बस ये समझा जाए कि राय बहादुरी के खिताब के करीब पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई खानदानी रईस थे। इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इनके संघर्ष और कामयाबी की मिसालें शहर में चर्चा का विषय थीं।
1: अरे बीए में थर्ड डिवीजन से पास हो गए और वो भी 2 साल में, तो कौन सा तीर मार लिया। उन्हें देखो जिन्हें पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी भी नसीब नहीं थी। सड़क पर लगे लैंप शेड की रोशनी में पढ़ा करते थे और कभी कभी तो जुगनू की रोशनी में भी सबक याद किया करते थे। जी हाँ, मैं शहर के मशहूर वकील बाबू अक्षय कुमार की ही बात कर रहा हूँ। और एक आप हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हुए भी कुछ नहीं पढ़ा जाता।
2: उनके घर में तो खाने तक को भी नहीं था।
1: नसीब लेकर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। श्रीमती जी, अपने लाडले को समझाएं, उसके लिए जिस्म को तपाया जाता है, गलाया जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आदमी कुछ बन पाता है। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता, पेड़ नहीं फूटता, पत्ते नहीं लगते, फल नहीं आता।
0: बाबू अक्षय कुमार का शुरुआती सफर तो संघर्षमय रहा ही। वकालत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन शीघ्र ही परिश्रम और लगन से वो समय भी आ गया जब वही काला कोट कामधेनु साबित हुआ। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उन्हें वो दर्जा मिलने लगा। बड़े बड़े जलसों में सभापति बनने का न्योता आने लगा। ये अक्षय कुमार के जीवन का वो समय था जब सारी खुशियां उनके कदम चूम रही थीं।
3: सभी मेहमान आ चुके हैं, मगर अभी तक हमारे खास मेहमान अक्षय बाबू नहीं दिखाई दिए।
4: जी हाँ, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
5: अरे साहब, किसी मुकदमे की तैयारी में उलझे होंगे।
2: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के जलसे की पहली स्पीच तो उन्हीं से ही शुरू होनी है।
5: अरे लीजिए, आ गए वकील साहब, आइए आइए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर।
6: दोस्तों, आज की महफिल में हमारे खास मेहमान हैं हम सब।

0: के हर दिल अजीज, हमारे प्यारे दोस्त और शहर के जाने माने वकील अक्षय कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहां मंच पे आकर हमारे नौजवानों के लिए दो शब्द कहें और ये बताएं कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने जीवन का ये सफर तय किया और इस ऊंचाई तक पहुंचे। अक्षय कुमार जी।
1: दोस्तों, आप सभी और घोष बाबू सम्मान के पात्र हैं जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि कुछ लोग भाग्य को बनाते हैं और कुछ लोगों को भाग्य बना देता है। मैं पहले किस्म के लोगों में से हूं। हमारे शहर, समाज और देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि स्वयं के कर्म और कड़े परिश्रम पर विश्वास करना होगा। मैं सभी नौजवानों में यही जज्बा देखना चाहता हूं।
2: वाह वाह वाह, कितना अच्छा बोलते हैं अक्षय बाबू।
3: इनकी शादी हो गई है क्या?
2: अभी नहीं, जीवन की भागदौड़ में शादी करने की फुर्सत ही कहां मिली अभी तक।
3: लेकिन यह सही समय है, अक्षय बाबू को अब विवाह कर लेना चाहिए।
1: समय बीतता रहा, अदालत से कचहरी, कचहरी से घर, घर से महफिल और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब हर कामयाब इंसान की तरह अक्षय बाबू के जीवन में भी उनके हम सफर का आगमन हुआ। हेमवती बेहद हसीन और हसमुख औरत थी।
4: जाने मन, मैं आपसे कुछ पूछूं, इजाजत है?
1: हाँ हाँ जाने मन, हम भी तो यही चाहते हैं कि कुछ आप अपनी कहें, कुछ हम अपनी कहें।
4: हम चाहते हैं कि आज शाम को हम लोग नुमाइश देखने चलें।
1: अच्छा,
4: शादी हुए हमें इतना समय गुजर गया, देखो ना, हम कहीं घूमने फिरने बाहर गए ही नहीं अब तक।
1: अब बात यह है प्रिय कि काम की व्यस्तताओं में कहीं घूमने फिरने का ख्याल ही नहीं आया। और नुमाइश, नुमाइश में क्या रखा है? कितनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ, मेरा तो दम घुटता है ऐसे माहौल में। क्यों ना हम घर में ही कोई आयोजन रख लें, मेरा मतलब है कि मनोरंजन कर लें।
4: ठीक है, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, रहने दीजिए।
1: अरे अरे अरे अरे, लगता है आप बुरा मान गई। अरे सुनो तो, चली गई। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। अरे कौड़ियों को दांत से पकड़ना पड़ा है, वो तो मैं बालों में खिजाब भी इसलिए लगाता हूं कि मुझे इनका कुछ ख्याल आ जाता है। मेरी नजर में ये फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है प्रियवर, चलते हैं नुमाइश के लिए, आप तैयार रहना।
4: रहने दीजिए रहने दीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। मेरी बहनों को देखो, कितना खुलकर खर्च करती हैं, आए दिन खरीदारी और सैर सपाटे करती हैं। उनके पति तो उन्हें मना नहीं करते, और एक हमारे साहब है।
1: जान तुम मुझे समझ नहीं सकी। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि कल हमें घोष बाबू की पार्टी में तो जाना ही है, फिर क्यों ना कल ही चला जाए। और हाँ, याद आया, वहाँ आपने भी तो ड्रामे में हिस्सा लिया है ना।
4: क्या मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने चार पैसे बचाने की फिराक में हैं? साहब, मैं आपकी खातिर ही तो घूमने के लिए कह रही थी। मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती थी और उसके लिए मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं।
1: ये तो समझती हैं कि पैसा जैसे पेड़ पर लगता है। हेमू, आज तुम बलाह की खूबसूरत लग रही हो।
5: ये बालों में जूड़ा, ये गजरा, अरे वाह वाह वाह वाह, अरे लगता है नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। कह देता हूं, आज तो आप सबके दिलों पर बिजलियां गिराएंगी, बिजलियां।
1: बड़ी कीमती साड़ी है, जरूर मायके सिलाई होंगी, और बनाओ श्रृंगार पर भी काफी खर्च हुआ होगा, सब बेकार का खर्चा है, पर किया क्या जाए, इनसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता, कहीं फिर से बुरा मान गई तो। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सब्र से ही काम लेना चाहिए। जी चाहता है प्रिय तुम्हारा हाथ चूम लूं।
4: जाइए भी, जल्दी से तैयार हो जाइए, ड्रामे के लिए देर हो रही है। अरे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। जनाब तारीफ तो ऐसे कर रहे थे जैसे खर्च करने के लिए तपाक से मेरे हाथ में रुपए थमा देंगे, लेकिन मैं भी इनसे एक कदम आगे ही हूँ, साहब को जल्दी ही पता लग जाएगा।
6: वाह वाह, क्या अभिनेत्री है, शकुंतला के रोल में जान ही डाल दी।
2: इन्हें तो फिल्मों में अभिनय करना चाहिए।
0: बड़े खुश नसीब हैं, ऐसा नगीना उनकी अंगूठी में जो जड़ा है।
2: लेकिन साहब इतना महंगा नगीना और ऐसे कंजूस की अंगूठी में, वो क्या जाने इसकी कीमत।
7: साहब गोशाल कंपनी से कोई महाशय आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
1: ठीक है, अंदर भेजो।
6: साहब ये 200 रुपए का बिल है।
1: बिल? कैसा बिल?
6: कल मेम साहब ने हमारी दुकान से कुछ खरीदारी की थी, उसी का बिल है।
1: ओह हाँ, अच्छा तो कल की चमक दमक, ये बिल उसका खमियाजा है।
8: मन मार कर अक्षय बाबू को सुंदर बीवी के इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ उठाना ही पड़ता था। बीवी की खातिरदारी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा अपने ऊपर भी करना पड़ता था, हालांकि ये सब उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। आए दिन किसी न किसी अनजाने खर्च का बोझ उनके सिर पर सवार रहता था। एक रोज वकील साहब जब कचहरी से लौटे।
4: सुनिए जी, श्रीमती किचलू आई थी और ये निमंत्रण पत्र दे गई हैं।
1: अच्छा लाओ दिखाओ तो।
4: हाँ ये लीजिए।
1: अच्छा है, निमंत्रण पत्र तो बड़ा महंगा छपाया है। अच्छा, अपने छोटे भाई के बीए में पास होने के शुभ अवसर पर आप सभी को सपरिवार प्रीति भोज में आमंत्रित करता हूं। लीजिए बताइए, ये भला बीए पास करने की खुशी में इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत है। मेरा भाई अगर बीए में पास होता तो मैं तो उसकी पीठ ठोक कर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। हजारों लोग हर साल बीए पास करते हैं, अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा चलो मान भी लिया जाए, लेकिन लेकिन ये ड्रामा खेलने का भी कार्यक्रम, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है।
4: क्यों, इससे बेहतर खुशी का और क्या मौका हो सकता है।
1: मेरी जान, डॉक्टर साहब समझदार आदमी है, ये उन्हें क्या सूझी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खुशी तो हृदय का तत्व है, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है।
4: ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना।
1: जाना पड़ेगा क्यों, क्या वादा कर लिया है।
4: अब देखिए ना, श्रीमती किचलू कितना आग्रह करके गई है।
1: तो मेरी जान तुम एक काम करो, जैसे वो तुम्हारे घर आई ऐसे ही तुम भी कभी उनके घर चली जाना।
4: क्या,
1: इसमें परसों जाने की क्या जरूरत है।
4: अरे जरूरत है भाई, अब आपको ही बता दूं, मुझे नायिका का पार्ट दिया गया है और मैंने उसे मंजूर भी कर लिया है। लगता है साहब ये खबर सुनकर खुश नहीं हुए हैं।
5: हम्म,

0: फिर वही ड्रामा। मतलब ये हुआ कि ये ड्रामा खेलेंगी और घोषाल एंड कंपनी फिर से कम 200 रुपए की चपत लगाएगी। मामला बेहद गंभीर है। वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बात की सख्त जरूरत है कि अभी से रोकथाम कर दी जाए।
1: ये बला फिर से तुमने अपने सर ले ली। अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तुमने, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितनी परेशान करती है।
0: मेरी जान, इस किस्म के जलसे नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं और यहीं पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है। अरे ऐसे ही जलसों में तानेबाजी और नोकझोंक की नौबत आ जाती है कि फला लेडी हसीन है इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर ना करे कि कोई किसी से जले। मुझे तो डर है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। इसलिए प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगा तो तुम हरगिज इसे स्वीकार नहीं करती।
2: साहब की दलीलें तो सुनिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे भी कम ना आका जाए। देखिए जी, मैंने तो यही सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े तो सब पुराने ही काम आ जाएंगे और ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होगी। बस कुछ घंटों की तकलीफ जरूर है और एहसान मुफ्त में हो जाएगा। अरे डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना? मगर अब नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मजबूरी उन्हें अभी लिखे देती हूँ। सचमुच क्या फायदा बेकार की उलझनों से।
0: कपड़े सब पहले के ही काम आ जाएंगे और कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। चलो, दिल से एक बड़ा बोझ तो उतरा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मामला ऐसा है तो क्यों मैं इतनी माथापच्ची करता।
1: अरे नहीं नहीं हेमू, मेरी जान, मेरी ये मंशा हरगिज नहीं है कि तुम जाओ ही मत। अब देखो ना, जब तुमने निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया है तो उससे मुकरना अच्छी बात नहीं मालूम होती। मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि जहां तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर ही रहना चाहिए।
2: आप फिक्र ना करें, अब नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बातें मैंने गांठ बांध ली हैं।
3: दूसरे दिन शाम को अक्षय बाबू बगीचे में अपनी एक खास जगह पर फूलों के खिलने का आनंद उठा रहे थे। अक्सर काम से फुर्सत मिलते ही वो बगीचे में टहलने आया करते थे। तभी एक बूढ़ा उन्हें एक रंगीन और खुशबूदार लिफाफा थमा गया।
0: लिफाफा? देखें तो किसका खत है, क्या लिखा है? मेरे प्यारे अक्षय बाबू,
2: आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ जरूर कर देंगे। आपके स्वभाव और आपके रहन सहन के तरीके सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपकी सादगी ने मुझे मोहित कर लिया है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुद्दतों की सोई।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहाँ बैठे देखा होगा। मैं कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है।
2: तो मौजूद है जिसके मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने रूप की जरा भी चिंता होती तो शायद मैं बहुत प्रसन्न होती, मगर मैं रूप की भूखी नहीं हूँ। मुझे तो सीने में सच्चा दिल रखने वाले एक इंसान की चाहत है और मैंने उसे आप पे देखा है। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के बंगले पर तशरीफ ले आए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहां अशोक के पेड़ के नीचे हरे कपड़े पहने मैं आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आऊंगी।

0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैंने कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है, ना जाने चेहरा कैसा दिख रहा होगा। क्या करूं? हाँ, क्यों ना हौस के पानी में अपनी सूरत देखी जाए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहां तो चेहरा साफ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर तो घर ही चलना पड़ेगा, वहां आईना देखता हूं। ये क्या? हजामत साफ नहीं है और ये कमबख्त साफा भी तो ठीक तरह से नहीं बंधा है। मगर इतना तो है कि मुझे कोई बदसूरत नहीं कह सकता। जरूर ये कोई ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी महिला है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा कुछ और होता ही नहीं। लेकिन मेरा फोहड़पन शायद ही किसी स्त्री को पसंद आए, मुझे अब इसका ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जाके बड़ी मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला कोई सच्चा जौहरी नजर आता है। भारतीय स्त्रियां तो शर्म हया की पुतली होती हैं, जब तक अपने दिल की हलचलों से मजबूर ना हो जाएं, वो ऐसा खत लिखने का साहस ही नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी, पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरान थे कि साहब यहां का रास्ता कैसे भूल गए। गरज ये कि आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया और जब घर चले तो फिटन पर बैठने की भी जगह नहीं थी।
1: अरे, आज सवेरे से कहां गायब रहे और ये माथे पर पसीना कैसा?
0: अब हाँ, जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ चला गया था।
1: तुमने तो मुझसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। जिगर का दर्द एक भयानक रोग है।
0: अरे, डॉक्टर साहब ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है।
1: इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। मालूम नहीं डॉक्टर चड्ढा बीमारी की तह तक पहुँचे भी है या नहीं।
0: अक्षय कुमार ने हेमवती को चुपती निगाहों से देखा, खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। शाम को जब वो पार्क, घंटाघर और आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे, तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। आज उन्हें पहली बार जीवन में अपने रूपवान ना होने पर दुख हो रहा था। आज वो अपनी पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और वकालत की डिग्री, सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर किचलू शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक थे। पार्टियां देना तो उनका जैसे शौक था। बंगला क्या था, शान और शौकत का जीता जागता नमूना था। दूर तक फैले अशोक के पेड़, सजे धजे फाटक, बरामदे की लंबी मेहराबें, सरू के पेड़ों की कतारें, बल्ब की रोशनी से चकाचौंध बंगला भव्यता का संकेत दे रहा था। मुख्य कक्ष में ओपन थिएटर और उससे सटा बार, अभिप्राय ये कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सजा धजा बंगला था।
2: अजय, वकील अक्षय कुमार, आज ये कूलर में फूल कैसे लग गए?
3: आइए आइए भाई, आज तो आप एकदम बाके नौजवान लग रहे हैं, क्या बात है
4: भाई। आज वकील साहब को क्या हो गया है, ये चमक दमक माजरा क्या है?
5: जी जनाब, माजरा कैसा, अपने अक्षय बाबू किसी से कम थोड़ी ही ना है। रुपया है, मान सम्मान है, इज्जत है और खूबसूरत बीवी है, क्या नहीं है इनके पास।
4: माफ करना, बात काट रहा हूँ, भाभी जी की संगत का असर रंग लाया है। बीवी अगर हसीन हो, जवान हो, ऊपर से अदाकारा हो, तो उसका जोड़ बिठाना कोई मामूली बात है क्या?

0: बेलने पड़ते, क्यों अक्षय बाबू?
1: कैसे कैसे मस्खरे महफिल में जमाए, इनसे फुर्सत मिले तो उन मोहतरमा को ढूंढा जाए। वहां देखूं उस अशोक के पेड़ के नीचे, मगर वो है कहां? आधा घंटा हो गया, चलो अब नाटक भी शुरू होने वाला है, वहीं बैठा जाए।
2: क्या काती लताएं हैं?
0: हाय, शकुंतला के बेश में तो ये अप्सरा हैं।
2: अजी साहब, फलक के चांद और धरती के चांद में कौन ज्यादा हसीन है, कहना थोड़ा मुश्किल है। क्या अक्षय बाबू?
1: ये क्या, ये तो हिम्मती है, इसने तो मुझसे कहा था कि नाटक में नहीं जाएगी। इन्होंने तो मेरी नसीहतों और अपने वादों और यहां तक कि मेरी खुशियों का भी ख्याल नहीं रखा। हे भगवान, यहां मेरा दम घुट रहा है, बाहर चलता हूं, उन मोहतरमा को तलाशता हूं। रात के 12 बजने को आए, उनका कहीं पता नहीं। मैं भी कैसा अहमक हूं, एक औरत के चकमे में आ गया, ना जाने हेमवती भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरे वो पेड़ के नीचे, वो सुंदरी, अरे हाँ, वो तो मुझे ही इशारे से बुला रही है। चलता हूं वहां। ऐ रूपवती, तुम्हारी इस कृपा के लिए दिल से मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हें देखने के शौक में मेरी आंखें पथरा गई हैं। अगर तुम्हें कुछ देर तक और नहीं मिल पाता तो शायद मेरी जान ही निकल जाती। कल शाम से ही मेरे दिल की जो हालत है उसका जिक्र करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने हुस्न के जलवे दिखाइए, ये पर्दा हटा दीजिए, चेहरे से घूंघट हटा दीजिए। ये क्या, अरे हेमवती, तुम? ओ, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी? बस हेमवती, बस अब मुंह से कुछ मत कहो, मैं खुद से बेहद शर्मिंदा हूं। हाँ हेमू, तुम जीत गई और मैं हार गया, और ये हार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 12वीं कड़ी, नसीहतों का दफ्तर। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, सतीश कक्कड़ और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई नव निर्वाचित सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी

नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में

0: जोड़ें और लोगों को भी प्रेरित करें। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गर्मियों की तेज धूप और उमस भरा मौसम न केवल असहज लगता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हर साल हजारों लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, जिनमें से कई को समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल सावधानियों और जागरूकता के साथ आप इस खतरे से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकती हैं। तो सबसे पहले सखियों, ये जानने की जरूरत है कि हीट स्ट्रोक और हीट थकावट में अंतर क्या है। शरीर जब अत्यधिक गर्मी से थक जाता है और शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है, तब यह स्थिति होती है। यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो यह हीट स्ट्रोक में बदल सकती है। अत्यधिक पसीना आना, त्वचा का ठंडा और नम हो जाना, कमजोरी और थकावट, चक्कर आना, सिर दर्द होना, धड़कन तेज या धीमी हो जाना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है सखियों? त्वचा का गर्म और सूखा हो जाना, भ्रम और बेहोशी या दौरे वाली स्थिति हो जाना, धड़कनों का तेज हो जाना। तो आप समझ ही गई होंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है। और अब जानते हैं इसके इलाज और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। व्यक्ति को ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, शरीर को ठंडे पानी से स्पंज करें, ढीले कपड़े पहनाएं, पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दें। वहीं अगर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं या नजदीकी अस्पताल ले जाएं। शरीर को तुरंत ठंडा करने की कोशिश करें, बर्फ के पैक, ठंडी तौलिया वगैरह इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। दोपहर 12 से 4 बजे तक कोशिश करें कि धूप में ना निकले, हल्के ढीले और सूती कपड़े ही पहने, दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, नारियल पानी, शिकंजी हमेशा लेते रहें, बाहर निकलते समय छाता, टोपी या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है सखियों। हीट स्ट्रोक और हीट थकावट को रोकना पूरी तरह संभव है, बस जरूरत है सही जानकारी, सतर्कता और समय पर कार्यवाही की। तो सखियों, बहुत सी जानकारी और भी देंगे आपको आगे कार्यक्रम में। पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो क्यों आज 12 मई है। हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। इसका उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, फसलों की कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि कीटों के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 40% फसलों का नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2018 में इस दिन की घोषणा की, जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की एक विरासत है। यह दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पौष्टिक भोजन प्रदान करने और कृषि व्यापार को सुरक्षित बनाने में पौधों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ पौधे हमारे जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए कितने आवश्यक हैं।

अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी, जो 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का एक सरकारी कार्यक्रम है। यह योजना 40% तक के भारी सब्सिडी के साथ 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य घरों में ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और बिजली बिल कम करना है। आवेदन करने के लिए आप pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले क्रम मेरी उड़ान की ओर।

0: न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। इन्हीं इरादों और वादों के साथ शुरुआत करते हैं आज के मेरी उड़ान क्रम का। आज हमारे साथ हैं सपना यादव का, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आजकल हम हर जो मूवमेंट होता है, क्षण होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या कोई भी अवसर, और कुछ भी सेलिब्रेशन में हमें जरूरत पड़ती है केक की। तो हम महिलाओं के लिए इस केक के बिजनेस में कितना सुनहरा अवसर है। सपना जी, सबसे पहले ये बताइए, केक का बिजनेस शुरू करना है, ये आइडिया आपको कैसे आया?
1: केक का बिजनेस करना है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली कोविड के समय सिचुएशन ऐसी थी कि किसी को कुछ अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट मुझे कुछ अवेलेबल नहीं था। मेरी एनिवर्सरी थी अप्रैल में, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या केक कैसे मिलेगा। बस वहीं से मैंने कुछ घर के सामानों से बनाया केक, फिर उसका स्टेटस रखा। जो दूसरे लोग थे जिन्होंने मेरा स्टेटस देखा, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे नेबर्स थे, तो उनको भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट।
0: कोविड के दौरान आपको कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन मिला कि आपने घर के लिए बनाया और फिर आपको बाहर से ऑर्डर मिलने लगे। तो अभी आपको कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं केक के?
1: अभी मुझे वीकली मिल जाते हैं 5 से 6, या फिर कभी कभी मुझे एक दिन में 3 या 4 भी बनाने पड़ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी देना पड़ता है और फिर लेट नाइट भी देना पड़ता है। तो ये चीजें मैं फिर ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं मंथ में 15-20 ऐसे ऑर्डर्स हो जाते।
0: तो सपना जी ये बताइए कि जब आपने पहला केक बनाया उसका आपका एक्सपीरियंस क्या था?
1: वो तो बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मैंने जो मैं देखती थी कभी सोचा नहीं था कि ये केक्स हम बना सकते हैं। बहुत खुशी हुई तब मैंने बनाया और मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो उन्होंने तारीफ की, तो वो तो एक स्पेशल ही होता है हस्बैंड की तारीफ मिले।
0: जब अपने किसी हुनर की कोई तारीफ करता है तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। सपना जी, सबसे पहले जब आपने सोचा कि आपको केक बनाना है तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी?
1: देखिए, केक बनाने के लिए तो हमारे घर में जो आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, हम केक उससे भी बना सकते। किचन में सोडा भी यूज होता है, बेकिंग पाउडर भी होता है, शुगर भी होती है, ये सब बेसिक चीजों से ही केक बनता है। फिर हम इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, वो एसेंस के होते हैं उसके। तो अगर आप सिंपल केक बनाएंगे तो एसेंस की नीड नहीं है, नहीं तो आप घर के ही बेसिक सामान से ही केक बना सकते हो। आपको कोई मैदे की जरूरत नहीं, कोई सूजी की जरूरत नहीं, आप घर के गेहूं के आटे से भी आप केक बना सकते हैं। इवन शक्कर नहीं है तो आप गुड़ भी डालकर केक बना सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम गुड़ से भी केक बना सकते हैं। तो कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं। हाँ, हमें एडवांस लेवल पर जाना है तो हमें चीजों की जरूरत।
0: इतने सारे ऑर्डर्स आपके पास आते हैं तो अभी तो आपको बहुत सारे इसमें लगने वाले सामानों की जरूरत पड़ती होगी, तो खुद मार्केट जाकर लाती हैं या ऑनलाइन मंगवाती हैं?
1: नहीं, वो मैं खुद सर्च करती हूँ मार्केट में। जैसे जैसे नई चीजें आती है मैं मार्केट खुद जाकर सर्च करती हूँ और फिर जैसे मुझे जिस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे आजकल बच्चों को थीम केक चाहिए, डोरेमोन केक चाहिए, बार्बी गर्ल थीम, तो ये सब अलग अलग थीम चल रही है आज।
0: इतना बारीक काम है कि इसमें बहुत सारे टाइम की जरूरत पड़ती
1: है। ये वो केक को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, पर जब उस चीज में आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है उन चीजों को, तो आपके हाथ ऐसे चलते जैसे आप रोटी नहीं बेलते हो फटाफट। जैसे एक लेडी को कितनी आदत हो जाती है रोटी बेलने की, उस तरह से केक आपका बनना। अगर मुझे कोई ऑर्डर देता है 2 घंटे पहले तो मैं केक रेडी करके दे दूँ।
0: 2 घंटे में अगर एक केक बनाना चाहे तो आराम से बन जाएगा।
1: आराम से
0: जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से संभालते हो और आप केक के लिए आराम से टाइम निकाल लेते हो।
1: ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलूंगी कि मुझे घर में रहकर मैं घर भी संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख पा रही हूँ और मैं ये काम भी कर पा रही हूँ। और अब बच्चे

0: हो गए हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं।
1: एक सवाल और था आपसे, जैसे जो सखियां चाहती हैं, जैसे उनको भी पता है कि वो बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं, उनमें भी हुनर है किसी चीज का, या सपोज वो केक ही बनाती हैं, अच्छा बना सकती हैं, इसकी शुरुआत वो कैसे करें?
0: शुरुआत तो सबसे पहले हमें केक का बेस, जो स्पॉन्ज बोलते हैं जिसको, ड्राई केक बोलते हैं, उसमें आप पहले बनाइए, एक दो बनाइए, चॉकलेट का बनाइए, वनीला बनाइए, ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल है।
1: तो इसके लिए प्रॉपर कहीं ट्रेनिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं?
0: कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल हूँ, जिस मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग भी अगर आप लेते हो और ट्रेनिंग करके छोड़ देते हो, आगे कुछ नहीं करते, पर आपको ट्रेनिंग लेने के बाद भी प्रैक्टिस तो लगती है।
1: प्रैक्टिस
0: आपके हाथ में सफाई आने के लिए आपको खुद को कम से कम 10 केक बनेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही बना पा रही।
1: तो जैसे कोई हमारी सखियां हैं घर पर ही शुरू करना चाहती हैं केक का बिजनेस, तो मिनिमम उनको कितने अमाउंट की जरूरत हो?
0: आप मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके, क्योंकि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उससे आप स्पॉन्ज बना सकते हैं, फिर आपको क्रीम चाहिए, टर्निंग टेबल चाहिए, स्पैचुला चाहिए, नाइफ चाहिए, इसके लिए आप 1000 रुपीज इनफ है। 1000 रुपीज 1500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
1: और ओवन भी जरूरत पड़ती होगी?
0: देखिए ओवन तो मैं खुद अभी कोविड के 2 साल मैंने बनाया, मेरे पास कोई ओवन नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी एडवांस कोई मशीन नहीं थी। मैंने अपना केक 2 साल तक कम मैं बता दूं हंड्रेड्स ऑफ केक मैंने कढ़ाई और कुकर में ही बनाए।
1: तो बहुत अच्छी बात है सपना जी। और बहुत सी हमारी सखियां होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनमें एक डर होता है, एक हौसले की शायद कमी होती है, वो आगे बढ़ नहीं पाती, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: सखियों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, और किसी भी चीज को देखकर घबरा जाना या डर जाना, कोई केक हम मेरे लिए भी पहले मैं देखती थी कैसे बनता होगा, पर कोई स्पेशली लेडीज के लिए तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, कर सकती हैं वो, बस अपने अंदर के हुनर को पहचाने तो सब कुछ पॉसिबल है।
1: बिल्कुल सही बात कही है कि अपने हुनर को पहचानने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। अगर आप में कोई प्रतिभा है, और जरूर होगी, हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और तराशने की। मेरी उड़ान क्रम में सपना जी आप आई, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

खूब सरस से गीत के बाद अब बारी है फूड जोन की। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और लू से बचने के लिए सत्तू यानी कि चने का आटा सबसे बेहतरीन और सस्ता घरेलू उपाय है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है सखियों। तो आइए आज आपको बताते हैं क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत के बारे में। यह सबसे आम और झटपट बनने वाली रेसिपी है जो पेट को तुरंत ठंडक देती है। तो इसमें लगने वाली सामग्री को लिख लीजिए सखियो। 2 बड़े चम्मच सत्तू, 1 गिलास ठंडा पानी, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना और धनिया। और सखियो अब जानते हैं इसे बनाना कैसे है। 1 गिलास में सत्तू और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह घोल लें ताकि गांठे ना पड़े। फिर बाकी पानी, नींबू, काला नमक, जीरा मिर्च और धनिया मिलाकर ठंडा ठंडा सर्व करें। ये क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत आपको बहुत ही पसंद आएगा। और सखियों आपको बता दें कि सत्तू का सेवन सुबह खाली पेट या दोपहर में करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो सखियों फिर से लेकर चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: सखियों, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। जहां यह हमें सीखने और जुड़ने के अवसर देता है, वहीं छोटी सी लापरवाही किसी भी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे सकती है। ऐसे में महिलाएं सुरक्षित डिजिटल अनुभव के लिए कुछ अनिवार्य कदम उठा सकती हैं। इंटरनेट पर अगर कोई जानकारी ऑनलाइन चली गई तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव है। इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर, बच्चों के स्कूल का नाम या वित्तीय विवरण साझा ना करें। आप इन्हें सीधे अपलोड भले ही नहीं करती, पर कई बार अनजाने में किसी पार्सल या अवार्ड को दिखाते समय ये सूचनाएं गलती से पोस्ट हो सकती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें।
1: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। कलाकार हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में शिखा शर्मा। आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने शिखर शर्मा के गाए कुछ भक्ति गीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी न सनसनी न सनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
3: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गायक कैफी आजमी के लिखे गीत से। संगीत मदन मोहन का है और फिल्म है हकीकत।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने, फिल्म है गुमराह।

0: फिल्म गुमराह के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस

0: नाइटेंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले इन पेशेवरों को प्रमाण पत्र, पदक और 1,00,000 रुपए नकद दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने और बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता शामिल हैं। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, हालांकि उन्हें फिर से आवेदन या फीस नहीं भरनी होगी। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: 21 जून योग दिवस को लेकर के जो यूनेस्को के माध्यम से पूरी दुनिया को योग अपनाओ, निरोगी बनो, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, शरीर में परमात्मा की दया से योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं।
0: मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आईपीएल में कल रात धर्मशाला में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात दी। वहीं आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर के करीब 88,000 अधिवक्ता 122 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आंधी बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर लू ने दस्तक दे दी है। कल रतलाम में तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज लॉयंस क्लब के भोजन सेवा केंद्र भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। राजगढ़ के पचोर पेट्रोल पंप अग्निकांड के घायलों से मंत्री गौतम टेटवाल ने आज शाजापुर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आगरमालवा में व्याख्यान का आयोजन किया गया। नवागत संभागायुक्त ने नर्मदापुरम संभाग का पदभार संभालते ही कमिश्नर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। जबलपुर के रामसागर तालाब में डूबे 2 युवकों में से एक का शव आज सुबह बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को

0: भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के ए सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज में। फिल्म है तेरे नाल लव हो गया।

आतिफ असलम और श्रेया घोषाल के गाए इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें भेजी थी बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने, प्रमिलागंज, आलौट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहते थे संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। अकोला से गांधी बाग के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की यही फरमाइश थी। अमरावती महाराष्ट्र के सरोद चौक से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया और उनके सभी

साथियों ने इसी गीत को सुनना चाहा था और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत। पसंद करने वाले हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदित्य शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर ने उमर खेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश भेजी है। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रणिता गवाणकर की फरमाइश आई है। बहादुरा नागपुर से शैलेश, सुमित, श्वेता, ध्वनि और टुकटुक गवाणकर ने भी ये फरमाइशी पत्र भेजा है। शाजापुर मध्य प्रदेश से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत भी यही गीत सुनना चाहते हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही पसंद है। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध गीत। आवाज शफकत अमानत अली और क्लिंटन की है। फिल्म है जोड़ी ब्रेकर्स।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रांझणा से। जावेद अली, कीर्ति सगाथिया और पूजा के गाए इस गीत को संगीत से संवारा है एआर रहमान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेजी है। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सोना शारदा, दामिनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, सतीश मिगलानी, सीमा, शायना, विशाल और मिगलानी परिवार के सभी सदस्यों ने मलौट कैंप पंजाब से अपनी फरमाइश भेजी है। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

इरशाद कामिल का लिखा एक और गीत आप सुनेंगे, चिन्मयी श्रीप्रदा और आतिफ असलम की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने। फिल्म है फटा पोस्टर निकला हीरो। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं अनिल कवचाले, नेहा फटसे, सीमा, सबीहा, पूजा, नेहा, सुषमा, स्मिता और उनके सभी साथी। इंदौर से ये पत्र आया है पटेल नगर मलौट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीतारानी जाजौरिया, गगनदीप और बेबी आरजू ने भी अपना फरमाइशी पत्र हमें भेजा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर की फरमाइश आई है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता भी अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। तो आप सबकी पसंद पर हम सुनवाते हैं आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीप्रदा का गाया

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं कौसर मुनीर का लिखा गीत विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। फिल्म है गोरी तेरे प्यार में और इस गीत को आवाज दी है नीति मोहन और कमाल खान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, कमलेश जयपुरिया, अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला, लालचंद्र मिश्र और नरेंद्र कुमार राम ने भिलाई और रायगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है। जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की फरमाइश है। प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने गौतम नगर जिला नांदेड़ से अपना पत्र भेजा है। भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की भी यही पसंद है।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें गीत संगीत चर्चा और रोजगार सूचनाएं शामिल होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा

कृषि के साथ वानिकी के लाभ विषय पर ली गई भेंटवार्ता विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, साथ ही होंगे बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल रहेगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8 बजे

पंडित दिनकर कैंकिनी का ख्याल गायन, राग होगा सावनी बिहार। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मालवी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपने मालवी लोकगीत सुने। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं शिखा शर्मा।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपने शिखा शर्मा और साथियों के गाए भक्ति गीत सुने। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। पेश है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अमित कुमार के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है तेरी कसम।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वर में आप सुनते हैं योगेश का लिखा गीत। संगीत गोविंद नरेश का है और फिल्म है हस्ती खेलती।

अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों के स्वर में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म शक्ति के लिए इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का था और फिल्म थी मशाल। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है काव्य पाठ। शब्द सागर कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ।
3: मेरी कविता का शीर्षक है कविता। जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, भू पर अधर्म की अति होती, भू पर अधर्म की अति होती, तब राम अवतरण लेते हैं, भू पर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं।

तब जन्मा करती सीताएं, तब जन्मा करती जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पर्ण कुटी।

तभी हरी जाती। फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है। फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है। पर क्रोच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है। पर क्रोच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है। रामायण और महाभारत, साकेत और उर्वशी कथा। रामायण और महाभारत, साकेत और उर्वशी कथा। यामा और हल्दी घाटी, नई कविता की नई छटा। नई कविता की नई छटा। करुणा की आहें आँखों में, आँखों से अश्रु बरसता हो। करुणा की आहें आँखों में, आँखों से अश्रु बरसता हो। जन्मा करती तब ही कविता, जन्मा करती तब ही कविता। जब शिवा समर में लड़ता हो, जब शिवा समर में लड़ता हो। शब्दों की धार लिए नदियाँ, जब सागर में मिल जाती हैं। शब्दों की धार लिए नदियाँ, जब सागर में मिल जाती हैं। तब महाकाव्य बन जाते हैं, कविताएं रास रचाती हैं। कविताएं रास रचाती हैं। कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है। पाकिस्तानी आतंकी जन को गोली से मार गिराती है, गोली से मार गिराती है। कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता। कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता। करुणा से क्रोध जन्म लेता, ढलता चंदा सविता सविता। ढलता चंदा सविता सविता। ऐसे जन्मा करती कविता, वैसे जन्मा करती कविता। कविता ही बन जाती कविता, कविता कविता कविता सरिता। कविता कविता सरिता कविता। कविता से जोश उमड़ता है, भर जाता बाहु बाहु में बल। कविता में जोश उमड़ता जब, भर जाता बाहु बाहु में बल। भारत माता की रक्षा हित, तन का लोहू करता कल कल। भारत माता की रक्षा हित, तन का लोहू करता कल कल। मकरंद बना करती कविता, मकरंद बना करती कविता। जय हिंद बना करती निर्भय, जय हिंद बना करती निर्भय। वंदे मातरम हुआ करती, वंदे मातरम हुआ करती। कविता भारत माता की जय, कविता भारत माता की जय। मेरी अगली कविता का शीर्षक है उठो जागो। उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है। उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है। पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए, पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए। कथाओं ने रचे रिश्ते, बहुत से धर्म बतलाए। कथाओं ने रचे रिश्ते, बहुत से धर्म बतलाए। उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली, उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली। भिखारी बन गया राजा, जनों ने राज्य श्री पाली। भिखारी बन गए राजा, जनों ने राज्य श्री पाली। नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा, नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा। महाभारत रचा जिसने, वहाँ थी कर्म की महिमा। महाभारत रचा जिसने, वहाँ थी कर्म की महिमा। कथा नायक भले हों कृष्ण, खलनायक बहुत से थे। कथा नायक भले हों कृष्ण, खलनायक बहुत से थे। कोई कम तो नहीं था पर धनुषायक बहुत से थे। कोई कम तो नहीं था पर धनुषायक बहुत से थे। समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है। समय ही है

0: खाता है, उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है। समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा, समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा, कई युद्धों में जन को क्रांति भी करते हुए देखा, बहा जब पाप का दरिया तभी जागृति यहाँ आई, हिलोरें ले रही जन में वहाँ थी क्रांति ही छाई, हिलोरें ले रही जन में वहाँ थी क्रांति ही थाई, उठे हुंकारते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली, उठे हुंकारते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली, गिरे और मर गए फिर भी, गिरे और मर गए फिर भी, विजय श्री प्राप्त कर डाली, विजय श्री प्राप्त कर डाली, दुर्गावती लक्ष्मी सदिश कुछ वीर बालाएं, समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा, समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा, परम सामान्य जन को शीर्ष पर चढ़ते हुए देखा, सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला, सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला, कई के कर्म तो बदले कई का धर्म भी बदला, गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है, गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है, कई पीढ़ी रही मरती बढ़ी वह पर नहारी है, बढ़ी वह पर नहारी है, चलें कर्तव्य पथ पर तो बहुत राहें भी मिल जाएं, चलें कर्तव्य पथ पर तो बहुत राहें भी मिल जाएं, करें हम धर्म पालन तो बहुत बाहें भी मिल जाएं, करें हम धर्म पालन तो बहुत बाहें भी मिल जाएं, समूची मेदनी अपनी समूचा गगन हो अपना, समूची मेदनी अपनी समूचा गगन हो अपना, जगत परिवार हो अपना हमारा सत्य हो सपना, जगत परिवार हो अपना हमारा सत्य हो सपना, जहां समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो, जहां समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो, बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो, बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो, परम कर आत्मबल हम वेगवत तूफान बन जाएं, परख कर आत्मबल हम वेगवत तूफान बन जाएं, तिमिर को बेध कर हम मनुज से भगवान बन जाएं, अधेरा चीर कर हम मनुज से भगवान बन जाएं, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शब्द सागर में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजयनंद तिवारी का काव्य पाठ, और अब सुनते हैं वसंत सागर गायको।
2: नमस्कार। कविता का शीर्षक है धरती का आंचल है जल। धरती का आंचल है जल और प्यास इतनी आदिम कि बुझती नहीं। धरती ने मेघों से गुहार लगाई, गुहार लगाई पहाड़ों से मैदानों से, गुहार लगाई कि खोलो नदियों के कल्ले सोते, झीलों की झिर्री खोलो, खोलो कि प्यासा न रहे जीवन, धरती पर पसरा रहे जल कि जैसे फैला हो माँ का आंचल, धरती का आंचल है जल। अगली कविता का शीर्षक है आज मैंने देखा एक सूखा नलकूप। आज मैंने देखा एक सूखा नलकूप, आज ही देखी पालक मुरझाई हुई, और देखा एक केला रखा रखा पिचक गया था। आज ही मैंने देखी पालक

0: मुरझाई हुई और देखा एक केला रखा रखा पिचक गया था। देखा कि भीतर पानी न हो और छुअन न हो पानीदार, जंग खा ही जाता है, भीतर चाहे जितना हो लोहा। अगली कविता का शीर्षक है जरूरी है पहिया होना। बहुत जरूरी होता है गतिमान होना, पहिया हो जाना। बहुत जरूरी होता है गतिमान होना, पहिया हो जाना। कमीज से टूटा बटन पहिया बन, भाग नहीं पाता है इधर उधर, धर दबोच टांग दिया जाता है पुनः मजबूत, फिर पिट पिट कर खुद के टूट कर बिखर जाने पर कमीज के फटते दम तक। हिसाब किताब की सनक में क्षण क्षण खन खन खनकते सिक्के, वितरागी हो जाते हैं कुछ अचानक, आदमी के हाथों छिटक कर पहिया बन मुक्ति की राह पर अग्रसर। डूब जाते हैं गहरी नाली किसी सिवेज में, ओझल हो जाते हैं गहरे किसी दर्रे दरार। आदमी की उघाड़ और हिसाब किताब की खनकती सांस संभाल के कई किस्से कहानियाँ अक्सर मैं सुनता हूँ, भागता हूँ पीछे पीछे पहिया बन भागते हुए बटन और सिक्कों से। अगली कविता का शीर्षक है पिता से सुंदर। वह अपने पिता से कहीं ज़्यादा सुंदर था, चॉकलेटी फिल्मी अभिनेता सा, चेहरा नवनीत रुई की मानिंद, मुलायम हाथ चांदी जैसे उजले पांव, सेव फल बोल दें तो हर्ज नहीं ऐसे कपोल, घर से कार और कार से दफ्तर तक सब वातानुकूलित। मगर एक फांस थी जो हरदम चुपती थी उसे कि पिता से उसके नाक नक्श यूं तो मिलते हैं बहुत कुछ, कद भी पिता से ऊंचा, लेकिन वह हो न सका पिता सा सुंदर। मसलन पैदल चलते पिता को काला ढांड बना दिया था आग उगलते सूरज ने, पर सूरज को उन्होंने कभी उलाहना नहीं दिया, बल्कि नमस्कार करते रहे सिर झुकाकर जीवन भर। सर्दियों में बनियान बुशर्ट और फटी स्वेटर का पीठ का हिस्सा कर लेते थे छाती पर, और बड़ी गर्मजोशी से कहते ठंड का बार कभी नहीं चलता ढकी छाती पर। गोदड़ी ज़्यादा गर्म होती है बनिस्बत तीन तीन रजाइयों के, पुराने छाते के सुराखों से अलग गिरती बारिश की धार, किंतु तरबतर पिता इस बात पर खुश रहे सदा कि कुछ न होने से बेहतर है कुछ होना, सिटी बस की पायदान पर पांव रखते रखते हर बार खुद को रोक लेते हैं और हाथों में मेथिया पालक की गड्डी लिए चप्पल फटकारते पिता घर लौट आते हैं मुस्कुराते हुए। पर उसे बार बार खोट नजर आती है अपनी सुंदरता में, हालांकि उसे कितना तो समझाया भाई बहनों दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि कहीं वह ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से। हालांकि उसे कितना ही समझाया भाई बहन दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि वह कहीं ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से, लेकिन वह हर बार ठंडी सांस छोड़ता और कहता पपीते के बीज होता है, हरगिज़ तो नहीं हो सकता काली मिर्च का दाना।
1: वसंत सकरगाई के काव्य पाठ के साथ ही कार्यक्रम शब्द सागर अब समाप्त होता है। आकाशवाणी भोपाल से अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म है श्रीमान सत्यवादी।

0: मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म छोटी सी बात का गीत। इस गीत को लिखा था योगेश ने और संगीत सलिल चौधरी का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं धारावाहिक जादूगर को सलाम। आज प्रस्तुत है इसकी 12वीं कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओं, धारावाहिक की 12वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी, नसीहतों का दफ्तर का नाट्य।

0: रूपांतरण। बाबू अक्षय कुमार पटना के जाने माने वकील थे। बड़े वकीलों में उनकी गिनती हुआ करती थी। बस ये समझा जाए कि राय बहादुरी के खिताब के करीब पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई खानदानी रईस थे। इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इनके संघर्ष और कामयाबी की मिसालें शहर में चर्चा का विषय थीं।
1: अरे बीए में थर्ड डिवीजन से पास हो गए और वो भी 2 साल में, तो कौन सा तीर मार लिया। उन्हें देखो जिन्हें पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी भी नसीब नहीं थी। सड़क पर लगे लैंप शेड की रोशनी में पढ़ा करते थे और कभी कभी तो जुगनू की रोशनी में भी सबक याद किया करते थे। जी हाँ, मैं शहर के मशहूर वकील बाबू अक्षय कुमार की ही बात कर रहा हूँ। और एक आप हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हुए भी कुछ नहीं पढ़ा जाता।
2: उनके घर में तो खाने तक को भी नहीं था।
1: नसीब लेकर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। श्रीमती जी, अपने लाडले को समझाएं। उसके लिए जिस्म को तपाया जाता है, गलाया जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आदमी कुछ बन पाता है। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता, पेड़ नहीं फूटता, पत्ते नहीं लगते, फल नहीं आता।
0: बाबू अक्षय कुमार का शुरुआती सफर तो संघर्षमय रहा ही। वकालत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन शीघ्र ही परिश्रम और लगन से वो समय भी आ गया जब वही काला कोट कामधेनु साबित हुआ। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उन्हें वो दर्जा मिलने लगा। बड़े बड़े जलसों में सभापति बनने का न्योता आने लगा। ये अक्षय कुमार के जीवन का वो समय था जब सारी खुशियां उनके कदम चूम रही थीं।
3: सभी मेहमान आ चुके हैं, मगर अभी तक हमारे खास मेहमान अक्षय बाबू नहीं दिखाई दिए।
4: जी हाँ, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
5: अरे साहब, किसी मुकदमे की तैयारी में उलझे होंगे।
2: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के जलसे की पहली स्पीच तो उन्हीं से ही शुरू होनी है।
5: अरे लीजिए, आ गए वकील साहब, आइए आइए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर।
6: दोस्तों, आज की महफिल में हमारे खास मेहमान हैं हम सबके हर दिल अजीज, हमारे प्यारे दोस्त और शहर के जाने माने वकील अक्षय कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ मंच पे आकर हमारे नौजवानों के लिए 2 शब्द कहें और ये बताएं कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने जीवन का ये सफर तय किया और इस ऊंचाई तक पहुंचे। अक्षय कुमार जी।
7: दोस्तों, आप सभी और घोष बाबू सम्मान के पात्र हैं जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि कुछ लोग भाग्य को बनाते हैं और कुछ लोगों को भाग्य बना देता है। मैं पहले किस्म के लोगों में से हूं। हमारे शहर, समाज और देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि स्वयं के कर्म और कड़े परिश्रम पर विश्वास करना होगा। मैं सभी नौजवानों में यही जज्बा देखना चाहता हूं।
4: वाह वाह, कितना अच्छा बोलते हैं अक्षय बाबू।
8: इनकी शादी हो गई है क्या?
4: अभी नहीं, जीवन की भागदौड़ में शादी करने की फुर्सत ही कहाँ मिली अभी तक।
8: लेकिन यह सही समय है, अक्षय बाबू को अब विवाह कर लेना चाहिए।
0: समय बीतता रहा। अदालत से कचहरी, कचहरी से घर, घर से महफिल और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब हर कामयाब इंसान की तरह अक्षय बाबू के जीवन में भी उनके हम सफर का आगमन हुआ। हेमवती बेहद हसीन और हसमुख औरत थी।
2: जाने मन, मैं आपसे कुछ पूछूं, इजाजत है?
7: हाँ हाँ जाने मन, हम भी तो यही चाहते हैं कि कुछ आप अपनी कहें, कुछ हम अपनी कहें।
2: हम चाहते हैं कि आज शाम को हम लोग नुमाइश देखने चलें।
7: अच्छा।
2: शादी हुए हमें इतना समय गुजर गया, देखो ना, हम कहीं घूमने फिरने बाहर गए ही नहीं अब तक।
7: अब बात यह है प्रिय कि काम की व्यस्तताओं में कहीं घूमने फिरने का ख्याल ही नहीं आया। और नुमाइश, नुमाइश में क्या रखा है? कितनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ। मेरा तो दम घुटता है ऐसे माहौल में। क्यों ना हम घर में ही कोई आयोजन रख लें, मेरा मतलब है कि मनोरंजन कर लें।
2: ठीक है, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, रहने दीजिए।
7: अरे अरे अरे अरे, लगता है आप बुरा मान गई। अरे सुनो तो, चली गई। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। अरे कौड़ियों को दांत से पकड़ना पड़ा है, वो तो मैं बालों में खिजाब भी इसलिए लगाता हूं कि मुझे इनका कुछ ख्याल आ जाता है। मेरी नजर में यह फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है प्रियवर, चलते हैं नुमाइश के लिए, आप तैयार रहना।
2: रहने दीजिए रहने दीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। मेरी बहनों को देखो कितना खुलकर खर्च करती हैं, आए दिन खरीदारी और सैर सपाटे करती हैं। उनके पति तो उन्हें मना नहीं करते, और एक हमारे साहब है।
7: जान तुम मुझे समझ नहीं सकी। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि कल हमें घोष बाबू की पार्टी में तो जाना ही है, फिर क्यों ना कल ही चला जाए। और हाँ याद आया, वहां आपने भी तो ड्रामे में हिस्सा लिया है ना।
2: क्या मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने चार पैसे बचाने की फिराक में हैं? साहब मैं आपकी खातिर ही तो घूमने के लिए कह रही थी, मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती थी और उसके लिए मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं।
7: ये तो समझती है कि पैसा जैसे पेड़ पर लगता है। हेमू, आज तुम बलाह की खूबसूरत लग रही हो। ये बालों में जूड़ा, ये गजरा, अरे वाह वाह वाह वाह। अरे लगता है नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। कह देता हूं आज तो आप सबके दिलों पर बिजलियां गिराएंगी, बिजलियां। बड़ी कीमती साड़ी है, जरूर मायके सिलाई होंगी, और बनाओ श्रृंगार पर भी काफी खर्च हुआ होगा, सब बेकार का खर्चा है। पर किया क्या जाए, इनसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। कहीं फिर से बुरा मान गई तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सब्र से ही काम लेना चाहिए। जी चाहता है प्रिय तुम्हारा हाथ चूम लूं।
2: जाइए भी, जल्दी से तैयार हो जाइए, ड्रामे के लिए देर हो रही है। अरे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। जनाब तारीफ तो ऐसे कर रहे थे जैसे खर्च करने के लिए तपाक से मेरे हाथ में रुपए थमा देंगे, लेकिन मैं भी इनसे एक कदम आगे ही हूँ, साहब को जल्दी ही पता लग जाएगा।
9: वाह वाह क्या अभिनेत्री है, शकुंतला के रोल में जान ही डाल दी।
10: इन्हें तो फिल्मों में अभिनय करना चाहिए।
11: बड़े खुश नसीब हैं, ऐसा नगीना उनकी अंगूठी में जो जड़ा है।
10: लेकिन साहब इतना महंगा नगीना और ऐसे कंजूस की अंगूठी में, वो क्या जाने इसकी कीमत।
12: साहब गोशाल कंपनी से कोई महाशय आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
7: ठीक है, अंदर भेजो।
10: साहब ये 200 रुपए का बिल है,

0: बिल? कैसा बिल?
1: कल मेम साहब ने हमारी दुकान से कुछ खरीदारी की थी, उसी का बिल है।
0: ओह हाँ, अच्छा तो कल की चमक दमक, ये बिल उसका खमियाजा है। मन मार कर अक्षय बाबू को सुंदर बीवी के इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ उठाना ही पड़ता था। बीवी की खातिरदारी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा अपने ऊपर भी करना पड़ता था। हालांकि ये सब उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। आए दिन किसी न किसी अनजाने खर्च का बोझ उनके सिर पर सवार रहता था। एक रोज वकील साहब जब कचहरी से लौटे,
2: सुनिए जी, श्रीमती किचलू आई थी और ये निमंत्रण पत्र दे गई हैं।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ तो।
2: हाँ, ये लीजिए।
0: अच्छा है, निमंत्रण पत्र तो बड़ा महंगा छपाया है। अच्छा, अपने छोटे भाई के बीए में पास होने के शुभ अवसर पर आप सभी को सपरिवार प्रीति भोज में आमंत्रित करता हूं। लीजिए बताइए, ये भला बीए पास करने की खुशी में इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत है? मेरा भाई अगर बीए में पास होता तो मैं तो उसकी पीठ ठोंक कर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। हजारों लोग हर साल बीए पास करते हैं, अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा चलो मान भी लिया जाए, लेकिन ये ड्रामा खेलने का भी कार्यक्रम है, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है।
2: क्यों, इससे बेहतर खुशी का और क्या मौका हो सकता है?
0: मेरी जान, डॉक्टर साहब समझदार आदमी है, ये उन्हें क्या सूझी? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खुशी तो हृदय का तत्व है, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है?
2: ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना।
0: जाना पड़ेगा क्यों, क्या वादा कर लिया है?
2: अब देखिए ना, श्रीमती किचलू कितना आग्रह करके गई हैं।
0: तो मेरी जान, तुम एक काम करो, जैसे वो तुम्हारे घर आई ऐसे ही तुम भी कभी उनके घर चली जाना।
2: क्या,
0: इसमें परसों जाने की क्या जरूरत है?
2: अरे जरूरत है भाई, अब आपको ही बता दूं, मुझे नायिका का पार्ट दिया गया है और मैंने उसे मंजूर भी कर लिया है। लगता है साहब ये खबर सुनकर खुश नहीं हुए हैं।
0: फिर वही ड्रामा, मतलब ये हुआ कि ये ड्रामा खेलेंगी और घोषाल एंड कंपनी फिर से मुझे कम से कम 200 रुपए की चपत लगाएगी। मामला बेहद गंभीर है, वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बात की सख्त जरूरत है कि अभी से रोकथाम कर दी जाए। ये बला फिर से तुमने अपने सर ले ली, अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तुमने, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितनी परेशान करती है। मेरी जान, इस किस्म के जलसे नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं और यहीं पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है। अरे ऐसे ही जलसों में तानेबाजी और नोकझोंक की नौबत आ जाती है कि फला लेडी हसीन है इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर ना करे कि कोई किसी से जले, मुझे तो डर है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। इसलिए प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगा तो तुम हरगिज इसे स्वीकार नहीं करती।
2: साहब की दलीलें तो सुनिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे भी कम ना आका जाए। देखिए जी, मैंने तो यही सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े तो सब पुराने ही काम आ जाएंगे और ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होगी, बस कुछ घंटों की तकलीफ जरूर है और एहसान मुफ्त में हो जाएगा। अरे डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना? मगर अब नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मजबूरी उन्हें अभी लिखे देती हूँ। सचमुच क्या फायदा बेकार की उलझनों से।
0: कपड़े सब पहले के ही काम आ जाएंगे और कुछ

0: ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। चलो, दिल से एक बड़ा बोझ तो उतरा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मामला ऐसा है तो क्यों मैं इतनी माथापच्ची करता। अरे नहीं नहीं हेमू, मेरी जान, मेरी ये मंशा हरगिज नहीं है कि तुम जाओ ही मत। अब देखो ना, जब तुमने निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया है तो उससे मुकरना अच्छी बात नहीं मालूम होती। मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि जहां तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर ही रहना चाहिए।
1: आप फिक्र ना करें, अब नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बातें मैंने गांठ बांध ली हैं।
2: दूसरे दिन शाम को अक्षय बाबू बगीचे में अपनी एक खास जगह पर फूलों के खिलने का आनंद उठा रहे थे। अक्सर काम से फुर्सत मिलते ही वो बगीचे में टहलने आया करते थे। तभी एक बूढ़ा उन्हें एक रंगीन और खुशबूदार लिफाफा थमा गया।
0: लिफाफा? देखें तो किसका खत है, क्या लिखा है? मेरे प्यारे अक्षय बाबू,
1: आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ जरूर कर देंगे। आपके स्वभाव और आपके रहन सहन के तरीके सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपकी सादगी ने मुझे मोहित कर लिया है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुद्दतों की सोई।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैं कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है।
1: तो मौजूद है जिसकी मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने रूप की जरा भी चिंता होती तो शायद मैं बहुत प्रसन्न होती, मगर मैं रूप की भूखी नहीं हूँ। मुझे तो सीने में सच्चा दिल रखने वाले एक इंसान की चाहत है, और मैंने उसे आप पे देखा है। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के बंगले पर तशरीफ ले आएं। मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहां अशोक के पेड़ के नीचे हरे कपड़े पहने मैं आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आऊंगी।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैंने कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है। ना जाने चेहरा कैसा दिख रहा होगा। क्या करूं? क्यों ना हौस के पानी में अपनी सूरत देखी जाए। नहीं नहीं नहीं, यहां तो चेहरा साफ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर तो घर ही चलना पड़ेगा, वहां आईना देखता हूं। ये क्या, हजामत साफ नहीं है, और ये कमबख्त साफा भी तो ठीक तरह से नहीं बंधा है। मगर इतना तो है कि मुझे कोई बदसूरत तो नहीं कह सकता। जरूर ये कोई ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी महिला है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा कुछ और होता ही नहीं। लेकिन मेरा फूहड़पन शायद ही किसी स्त्री को पसंद आए। मुझे अब इसका ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जाके बड़ी मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला कोई सच्चा जौहरी नजर आता है। भारतीय स्त्रियां तो शर्म हया की पुतली होती हैं। जब तक अपनी दिल की हलचलों से मजबूर ना हो जाएं, वो ऐसा खत लिखने का साहस ही नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी, पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरान थे कि साहब यहां का रास्ता कैसे भूल गए। गरज ये कि आज उन्होंने

0: इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। मालूम नहीं डॉक्टर चड्डा बीमारी की तह तक पहुंचे भी हैं या नहीं।
1: अक्षय कुमार ने हेमवती को चुपती निगाहों से देखा, खाना खाकर अपने कमरे में जा लेटे। शाम को जब वो पार्क, घंटाघर और आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे, तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। आज उन्हें पहली बार जीवन में अपने रूपवान ना होने पर दुख हो रहा था। आज वो अपनी पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और वकालत की डिग्री सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर किचलू शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक थे। पार्टियां देना तो उनका जैसे शौक था। बंगला क्या था, शानो शौकत का जीता जागता नमूना था। दूर तक फैले अशोक के पेड़, सजे धजे फाटक, बरामदे की लंबी मेहराबें, सरू के पेड़ों की कतारें, बल्ब की रोशनी से चकाचौंध बंगला भव्यता का संकेत दे रहा था। मुख्य कक्ष में ओपन थिएटर और उससे सटा बार, अभिप्राय ये कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सजा धजा बंगला था।
2: अरे वकील अक्षय कुमार, आज ये कूलर में फूल कैसे लग गए?
3: आइए आइए भाई, आज तो आप एकदम बाके नौजवान लग रहे हैं, क्या बात है
4: भाई। आज वकील साहब को क्या हो गया है, ये चमक दमक माजरा क्या है?
5: जी जनाब, माजरा कैसा, अपने अक्षय बाबू किसी से कम थोड़ी ही ना है। रुपया है, मान सम्मान है, इज्जत है और खूबसूरत बीवी है, क्या नहीं इनके पास।
4: माफ करना, बात काट रहा हूँ, भाभी जी की संगत का असर रंग लाया है। बीवी अगर हसीन हो, जवान हो, ऊपर से अदाकारा हो, तो उसका जोड़ बिठाना कोई मामूली बात है क्या? क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, क्यों अक्षय बाबू?
1: कैसे कैसे मस्खरे महफिल में जमाए, इनसे फुर्सत मिले तो उन मोहतरमा को ढूंढा जाए। वहां देखूं उस अशोक के पेड़ के नीचे, मगर वो है कहां। आधा घंटा हो गया, चलो अब नाटक भी शुरू होने वाला है, वहीं बैठा जाए।
3: क्या कातिल लताएं हैं,
4: हाय शकुंतला के बेश में तो ये अप्सरा हैं।
3: अजी साहब, फलक के चांद और धरती के चांद में कौन ज्यादा हसीन है, कहना थोड़ा मुश्किल है क्या अक्षय बाबू?
1: ये क्या, ये तो हिम्मती है, इसने तो मुझसे कहा था कि नाटक में नहीं जाएगी। इन्होंने तो मेरी नसीहतों और अपने वादों और यहां तक कि मेरी खुशियों का भी ख्याल नहीं रखा। हे भगवान, यहां मेरा दम घुट रहा है, बाहर चलता हूं, उन मोहतरमा को तलाशता हूं। रात के 12 बजने को आए, उनका कहीं पता नहीं। मैं भी कैसा अहमक हूं, एक औरत के चकमे में आ गया, ना जाने हेमवती भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरे वो पेड़ के नीचे, वो सुंदरी, अरे हाँ वो तो मुझे इशारे से बुला रही है। हाँ चलता हूँ वहाँ। ऐ रूपवती, तुम्हारी इस कृपा के लिए दिल से मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हें देखने के शौक में मेरी आंखें पथरा गई हैं। अगर तुम्हें कुछ देर तक और नहीं मिल पाता तो शायद मेरी जान ही निकल जाती। कल शाम से ही मेरे दिल की जो हालत है उसका जिक्र करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने हुस्न के जलवे दिखाइए, ये पर्दा हटा दीजिए, चेहरे से घूंघट हटा दीजिए। ये क्या, अरे अरे अरे, अरे हेमवती, तुम ओ, ओ,

0: तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। बस बस हिम्मती, बस अब मुंह से कुछ मत कहो। मैं खुद से बेहद शर्मिंदा हूं। हाँ हाँ हेमू, तुम जीत गई और मैं हार गया, और ये हार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 12वीं कड़ी, नसीहतों का दफ्तर। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, सतीश कक्कड़ और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के अवसर पर सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल लिसाम्मा पीवी ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को बधाई दी। मेजर लिसाम्मा ने अथक परिश्रम करते हुए निरंतर सेवा करने और अत्यंत करुणा और सहानुभूति के साथ रोगियों की देखभाल करने के लिए उनकी सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। और आईपीएल मैच

हर मुश्किल आसान हो जाती है जब इरादों में जान होती है। वक्त चाहे कितना भी सख्त हो, हौसला अगर पक्का हो तो रास्ता भी अपना बनता है, क्योंकि जो अपनी सोच बदल देता है वो अपनी दुनिया बदल देता है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, आशा करते हैं कि आप इस भीषण गर्मी में अपना ध्यान रख रहे होंगे। पानी पीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि धूप में बाहर ना जाएं, भीषण गर्मी से बचें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में, चर्चा करेंगे नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह पर, और साथ ही साथ हरित आदतें कैसे हम युवाओं की नई पहचान बन रही हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत धुरंधर से।

दोस्तों धुरंधर से अभी आपने ये गीत सुना, संगीतकार शाश्वत सचदेव और रोशन और गीतकार इरशाद कामिल और साहिल उद्यानवी। आप सभी सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्याचार्य। दोस्तों पौधे पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। हम जो हवा लेते हैं उसका 80% ऑक्सीजन पौधों से आता है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 90% हिस्सा वनस्पतियों पर निर्भर करता है। पौधों के इसी महत्व को समझते हुए और उनके स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल आज ही के दिन यानी कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि पौधों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता से जुड़ा है। बात करें चुनौतियों की तो जलवायु परिवर्तन, बीमारियां, जैव विविधता में बदलाव से ये सब चुनौतियां हम सभी देख रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इसीलिए आज के दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है और इस साल की थीम है पादप स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यापार और डिजिटल नवाचार, प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल इनोवेशन। एक छोटी सी कविता से इस थीम को और बेहतर समझा जा सकता है। जल सुरक्षित तो जग सुरक्षित, हवा की खुशबू मिट्टी का मान, पौधों में बसती है सबकी जान, पर आज खामोश खड़ी है हरियाली, बीमारियों ने चुराई है इसकी लाली, जो बीच सरहद पार से आते हैं संग अपने अनचाहे दुश्मन लाते हैं। सुरक्षित व्यापार का अब संकल्प ले हम, फसलों की आंखों की आंखों में ना हो नम, अब हाथ थामेंगे नवाचार और विज्ञान का, रास्ता खुलेगा तरक्की और मुस्कान का, डिजिटल नजर से सब फसलें पहचानी जाएंगी, बीमारी आने से पहले ही हार मान जाएगी, सिर्फ एक दिन नहीं ये हर पल का है वादा, पेड़ लगाएंगे हम जरूरत से भी ज्यादा, पेड़ लगाएंगे हम जरूरत से भी ज्यादा। दोस्तों 2026 का ये पैगाम याद रखना है कि पादप स्वास्थ्य रहेगा तो ही हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। पौधे बोल नहीं सकते लेकिन उनकी खामोशी में ही हमारा भविष्य छिपा है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक वादा है कि हम अपनी धरती को हरा भरा रखेंगे, क्योंकि अगर जड़ सुरक्षित तो जग सुरक्षित। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गानी की आवाजों में।

आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका शीर्षक है नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह, और उन प्रयासों की जो हमारे आदिवासी और दूर दराज क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। भारत में सकारात्मक बदलाव, नक्सलवाद में गिरावट। अब अगर हम भारत की ओर देखें तो एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक समय था जब नक्सलवाद देश के कई हिस्सों में गंभीर चुनौती बना हुआ था। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों की रणनीति, सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और सरकार की विकास उन्मुख नीतियां हैं। आत्मसमर्पण हिंसा से विश्वास की ओर। दोस्तों, इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसमर्पण। हजारों नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। सरकार ने उन्हें पुनर्वास, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। ये दर्शाता है कि जब अवसर और विश्वास मिलता है तो बदलाव संभव है। विकास की नई किरण। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तेजी से विकास हो रहा है। नई सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है, जिससे गांव शहर की दूरी कम हो रही है। स्कूल और अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर लगातार सुधर रहा है। पुनर्वास और सशक्तिकरण का एक नई शुरुआत। सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत पूर्व नक्सलियों को घर और जमीन दी जा रही है, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल उनका जीवन बदल रहा है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक माहौल बन रहा है। आम नागरिक की भूमिका। साथियों, किसी भी समाज में स्थायी शांति केवल सरकार या सुरक्षा बलों के प्रयासों से नहीं आती, उसमें आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें चाहिए कि हम अफवाहों से दूर रहें, अपने आसपास जागरूकता फैलाएं, युवाओं को शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से की ओर प्रेरित करें। आज की चर्चा ये स्पष्ट है कि जहां एक और दुनिया के कुछ हिस्सों में आतंकवाद अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, वहीं भारत में नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा रहा है। ये बदलाव हमें उम्मीद देता है कि सही दिशा, मजबूत इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयासों से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और विकसित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्य से।

दोस्तों, शंकर महादेवन की आवाज में भी आपने गीत सुना लक्ष्य से। और अब हम बात करने वाले हैं हरित आदतें। जब युवा इन आदतों को अपनाते हैं तो वे समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरते हैं। आज की युवा पीढ़ी यह समझती है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ेगा। इसीलिए वो सिर्फ ये सारी चीजें पढ़ते नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना, सुरक्षित भोजन, प्राकृतिक खेती और आहार का, ये सब युवा ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं ने अपनी कूल दिखने की परिभाषा को बदल दिया है। प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ, स्टील स्ट्रॉ का उपयोग करते हैं। कपड़े के बने बैग्स का यूज करना, शहर में मिट्टी के घरों को बढ़ावा देना, ये सब युवा सोशल मीडिया से देखते हैं। और आजकल सस्टेनेबल लिविंग एक ट्रेंड भी बन चुका है, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डिजिटल क्रांति हरित आदतों को घर घर तक पहुंचा रही है। हरित आदतें युवाओं की एक ऐसी नई पहचान है जो ये दर्शाती है कि वे आने वाली पीढ़ी के प्रति कितने गंभीर हैं। जब एक युवा हाथ में कपड़े का बैग लेकर निकलता है या पौधारोपण की पहल करता है तो वह केवल पर्यावरण नहीं बचा रहा होता, बल्कि एक नए समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की नींव रख रहा होता है। छोटे बदलाव ही आगे जाके एक बड़े बदलाव लेकर आएंगे। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करेंगी। अब वक्त हो चला है महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। पद की संख्या है 11,127। आवेदन देने की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। अधिक जानकारी आप rrbapply.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर भी। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म ढिशुम से।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कवि शिव राग तेलंग।
8: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: पुलिस?
2: मिस सीमा
4: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए,

0: आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में है। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत रॉक स्टार फिल्म से लिया गया है। आवाजें हैं मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की। इर्शाद कामिल के बोलों को संगीतबद्ध किया AR रहमान ने।

कार्यक्रम का अगला गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ है। धुन बनाई AR रहमान ने, अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजें हैं। इस गीत को हमने लिया तमाशा फिल्म से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत।

0: अलका याग्निक और अरिजीत सिंह के आवाजों में गाए तमाशा फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय शाम के 5:55 हुए हैं। लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: Na Sansani, na Sansani, na Sansani, na Sansani. Na Utejna, na Utejna. Na Shor Din Ra, na Shor Din Ra, na Shor Din Ra. Nahi Ahenka. Keval Manoranjan, Gyan Vardhan aur Sachche Samachar. Ji haan, yahi bikherta hai aapke jeevan mein. आकाशवाणी परिवार
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्यों और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस अदालत में 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व के अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान,

0: जिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्या।

0: बताओ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है।
0: जी
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
0: जी
1: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है। ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
1: जी
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी, तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा।

0: गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
1: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
0: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
2: कोशिश करता हूँ।
0: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
1: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
0: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तू कुछ बोलता क्यों नहीं?
2: विद्या विद्या,
0: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
1: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
0: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
1: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
0: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
1: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
0: हाँ हाँ चलिए चलिए।
1: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
0: जी।
1: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
1: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
1: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
1: हाँ, हाँ,
4: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
1: हाँ,
4: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
1: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
0: जी
4: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
1: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
1: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
1: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
0: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
0: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
0: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
1: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्द ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से

0: शरीर को पहुंचकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर। ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
3: इन्हें हमारा सलाम।
4: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
6: नमस्कार
4: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
6: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
4: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
4: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
6: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
4: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
6: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
4: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
6: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और मां का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी।

0: भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
2: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सबके बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत जूली फिल्म का है, जिसे आवाज दी किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की बोल संगीत राजेश रोशन का।

आनंद फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, गुलजार का लिखा हुआ। संगीत तैयार किया सलील चौधरी ने, आवाज लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: शादी तक पहुंच गई है और हमने लड़की की शक्ल भी नहीं देखी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत लिखा है इंदिवर ने। धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने। किशोर कुमार की आवाज है और इस गीत को हमने लिया कलाकार फिल्म से। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत।
2: अरे फोटो क्या करना
3: है? हाँ?
4: अरे वापस दे दो,
0: एक ही है।
4: चांद जब आए
5: उसके पापा को है।
4: प्यार बरसाए हम

0: प्यास दिल की
1: मैंने ऐसा किया कब की बात है
0: जहाँ
1: बेटी को खुशी ना मिले तो की फर्क पहन दे उसी से करवा लो ना सैक्रिफाइस।

0: रेस्टोरेंट की ड्यूटी खाली है सर,
1: कल भी जाएगा, आज भी जाएगा।
2: किशोर कुमार की आवाज में गाए कलाकार फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
0: जी सर।

0: पार्टियां खोल।
1: वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है

0: सैन्य। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर।

0: भारतीय सेना।
1: ठीक है साहब, जैसा आपको ठीक लगे।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध है। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक

0: होगी जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए डालते हैं एक नजर इस समय में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं कृषि के साथ वानिकी के लाभ। इस विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से ली गई भेंटवार्ता। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम बता दें सुर्खियों में, ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात 8:15 पर। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनाएंगे आज रात 10:00। रात 9:30 सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकश, जिसमें आज आप सुन सकते हैं महफिलें समाप्त। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 सुनिएगा पंडित दिनकर कैकिनी का गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ। सुरभि सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिएगा प्रेम शंकर शर्मा के गाए भजन। प्रदेश की सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 9:30। 10:00 जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा कार्यक्रम महिला संसार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 सुनिएगा पंडित गिरिराज का सितार वादन राग बसंत मुखारी। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुन सकते हैं मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर आराधना कुमारी से ली गई भेंटवार्ता। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल के कार्यक्रम। अब आइए डालते एक नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आप सुन सकते हैं सुबह 11:00। आपकी फरमाइश होगा दिन में 12:00। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कल सुनिएगा जादूगर को सलाम का भाग 13। समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी ग्वालियर की ही प्रस्तुति में 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं

0: शाम 5:02 पर, माफ कीजिए, दोपहर 2:02 और 2:30 पर आपकी फरमाइश के अंतर्गत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:35, शाम 6:30 और रात 8:15 पर। 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:00।
1: दुश्मन के अलावा और कोई कैजुअलिटी होगी ना?
0: रात 9:30 चर्चा का विषय है, आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। बन गया जीतू जेंटलमैन, वसीम खान का लिखा ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे कल रात 10:00, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। राग रजनी कार्यक्रम में 10:30 सुनिएगा पंडित गिरिराज का सितार वादन राग रागेश्री। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: देखिए अरसन को कुछ नहीं।

0: लड़के की लाश नहीं देखना चाहता हूँ।
1: अरसान पुत्र साहब,
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 7:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
0: मेहरबानी करके छोड़ दीजिए।
1: अरसान देख,
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: उसकी एग्जैक्ट लोकेशन
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार
3: सुबह।

0: स्ट्रिप गलत भी हुई तो देख लेंगे।
1: नमस्कार, समाचारों के साथ मेराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे शुरुआत। ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर होगी चर्चा। लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल होगी जारी। 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे 1,835 करोड़ से ज्यादा रुपए। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी। इस यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया।
2: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात का होगा और इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है। उसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य आधार है।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। बैठक में शामिल विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 मई को हुए नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को न नया आवेदन करना होगा और न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया,
3: इसको जाँच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो शिकायत आई थी उसमें अगर एक इंच की भी एक आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा। हम जितना डिले करेंगे उतना ये समस्या बढ़ेगी, उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे।
1: मैं तुझे पूरा सपोर्ट। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साइबर अपराधों और बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत संदिग्ध लोगों का डेटा एआई सिस्टम को दिया जाएगा जो उन बैंक खातों को पकड़ेगा जिनका इस्तेमाल साइबर ठग ठगी की रकम इधर उधर करने के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला प्रकरण की अंतिम सुनवाई आज पूरी हो गई। करीब दो घंटे की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की 98 दिनों की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैज्ञानिक रूप से अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि यह स्थल मंदिर है या मस्जिद। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला को वाग्देवी मंदिर बताते हुए पूर्ण अधिकार की मांग की है। इस साल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 365 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है जो देश के कुल उत्पादन का 18% है। भारत से होने वाले कुल गेहूं निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी 35 से 40% है और शरबती व ड्यूरम गेहूं की मांग अमेरिका जर्मनी इटली और दुबई जैसे देशों में बनी हुई है। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रूपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति डीडी बंसल आज अपने सरकारी आवास से 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सभी को साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए। देवास जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मोरूखेड़ी ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 350 कंटूर ट्रेंच बनाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे हर साल करीब 13 लाख लीटर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी एआई की पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के 11-11 मैच में 14-14 पॉइंट्स हैं। आज जीतने वाली टीम सीधे पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना झाबुआ और बैतूल में जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आगरमालवा में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण कार्य में नलखेड़ा ग्रामीण के सर्किल 20 ने तय समय से पहले 100% काम पूरा किया। खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों को ईंधन बचाने के लिए काफिले में केवल जरूरी वाहन रखने के निर्देश दिए। देवास में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी। जिले को 196 सीटों का कोटा मिला है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मादा चीता के चारों शावक मृत पाए गए। सुबह मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट के पास शव मिले। शहडोल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। माफ कीजिए, सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल के साफ सुनैया भैया बहनियन का लालन भाई के राम राम सुनैया भैया बहनी। संयुक्त राष्ट्र 12 मई का अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनावा जाते है, जौने वैश्विक स्तर में यह बात के जागरूकता बढ़ावा जा सके। पादप स्वास्थ्य की रक्षा जैसन भूख का समाप्त करे, गरीबी का कम करे, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करे आ आर्थिक विकास का बढ़ावे में सहायक हो सका थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष 2020 के एक थे महत्वपूर्ण विरासत आए। सुनैया भैया बहनी, हम पांचे जौने ऑक्सीजन में सांस ले थे ओखर 98% पौधन से आवत है। हम जो भोजन करी थे ओकर 80% पौधन से प्राप्त होता है। पर हर बरिस कीट और बीमारी के कारण हमार लगभग 40% फसल नष्ट हो जाती, जिससे सगले जन के नेता भोजन पोषण उपलब्ध कराई के प्रयास में बाधा उत्पन्न होती। पादप जैव सुरक्षा पौधन के नेता सीमा नियंत्रण और स्वच्छता के तरह है, फसलन का नुकसान पहुंचावे आ उनके व्यापार का बाधित करे वाले खतरनाक कीट आ बीमारी का रोके के नेता उनखर जांच सुरक्षा आ प्रतिक्रिया करब या सुरक्षा कवच के काम करत है, जिसे हम ही पाचन का भोजन मिलत है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सुचारू राखत है आ बहुल जैव विविधता का संरक्षित करत है। व्यापार में लागू किए जाए वाला अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वस्थ मानक जैसन जैव सुरक्षा उपकरण बेहतर उत्पादन बेहतर पोषण पर्यावरण सगले जन का बेहतर जीवन का सक्षम बनाए के केहू का पाछे न छोड़त कीन बेहतर लक्ष्य के आधार बनत है। पौध स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पौध स्वास्थ्य के महत्व का उजागर करे के एक अवसर होता है, न केवल अपने आप में बल्कि हमारे एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हिस्सा के रूप में, जेमा मानव पशु और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य शामिल हैं। यह सुनिश्चित करब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आए कि हम अपने ग्रह द्वारा प्रदान की जाए वाली खाद्य संसाधनों का अधिकतम अधिकहा करे के नेता हर संभव प्रयास करे चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र एक विशेष एजेंसी आए, जिसमें 194 सदस्य देश हैं। यह एजेंसी भूख आ कुपोषण उन्मूलन आ प्राकृतिक संसाधन के सतत प्रबंधन आ उपयोग के नेता अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के नेतृत्व करती। एकर लक्ष्य सगले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करावाए, जहां हर केहू का सक्रिय स्वास्थ्य जीवन जिये के नेता पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाला भोजन नियमित रूप से उपलब्ध हो चाहिए। विश्वभर में स्थित 130 से अधिक FAO कार्यालय एक थे ऐसन कार्यालय आए जो कि यह लक्ष्य आ व्यापक सतत विकास एजेंडा का प्राप्त करे के नेता साझेदार के साथ मिलके काम करत है। सुनैया भैया बहनी, मनई बर्बत कहाँ ता खूब करिस, अबई सुन लीन जाए रामचरण वर्मा के गाई विकास गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: करने के पैसे मिलेंगे।
1: तो इसी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाउ सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दस लाख की लॉटरी जी,
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हो गया इंतजाम।
5: किसका? गुड्डी की फीस का।
4: दिखा।
5: 20,000 का लोन तुरंत?
4: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
5: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार।
6: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
6: हाँ दी नया मोबाइल।
7: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
6: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
7: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
6: पर दी
7: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
6: हाँ दी पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
7: अच्छा।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: तीनों कॉलेज में
9: डोंट वरी
8: फीस तो देखो।
10: क्या हाल है, क्या हुआ?
9: हाँ फीस की टेंशन,
10: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए का नो कोलैटरल।
9: वो कहा
10: मिठाई?
3: RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: ये देख कैसे।
7: हैप्पी बर्थडे भाई।
11: देखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
7: हमेशा शॉपिंग।
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
12: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
13: आई नो पा, सेव करो सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो माँ।
13: RBI कहता है
3: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
14: दादी कौन सा प्लांट है?
15: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
14: दादी रुको, संध्या क्लिक मत करना।
15: क्यों?
14: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
15: थैंक्स बप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
7: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, तू बन गया हो।
16: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
17: ब्रो ये फटा है। सुन फटे फटे आप पुराने नोट को
18: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
17: वाओ नया नोट मिलेगा?
18: हाँ,
17: जिससे तू हमें पहला पार्टी देगा।
7: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, तू बन गया हो।
19: पापा लाइए 3,000।
20: क्यों भाई?
19: मेरी पॉकेट मनी।
20: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
19: ए पापा बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ।
20: है
19: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
20: अरे वाह मुझे भी सिखाओ, अपने 1,000 ले जाओ,
19: अपना मोबाइल लाओ
20: ले ले। भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
21: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह दिल बन गया।
22: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
22: जानकार बनिए, सतर्क रहे।
23: कम ब्याज पे लोन चाहिए,
24: वो भी ऐप से। वाह
22: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
22: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
25: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाह मसीह।
22: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
0: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Work from home? How salary? This is equipment. अरे वाह!
0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से?
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
25: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
6: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
25: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
25: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
25: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
25: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पुलिस?
6: मिस सीमा
4: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1 लाख दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
25: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
26: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
27: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
26: पर ये होगा कैसे?
27: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
26: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
27: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
26: बस
27: बस
26: समझ गया।
27: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
28: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से?
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे।
25: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
28: 2 लाख भेजिए बाकी बाद में।
25: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
25: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
28: अरे
25: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
25: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
25: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

क्लस्टरिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनैया भैया बहनी, आइए अब सुना जाए भेंट वार्ता, जेखर विषय है औषधि पौधों का विनाश विहीन दोहन। वार्ताकार हम मुनेन्द्र कुमार द्विवेदी, इनसे बतकहाँ चलाइन है मनसुख भाई।
2: किसान भाई राम राम। आज हम पंचे चर्चा कर रहे हैं औषधि पौधन के विनाश विहीन विदोहन के बारे में। अपने यहाँ औषधि जो पौधा हाँ, या कि कुछ लोगन का जानकारी नहीं आए, या कि कुछ लोगन का जेका जानकारी है ओकर अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो हम लोगन का औषधि फसलन के बचाव कैसा हो सके ओके बारे में जानकारी कैसा हो सके। आज हमारे बीच है डॉक्टर मुनेन्द्र कुमार द्विवेदी। हम उनसे पूछी थी कि अपना ये बताई कि अपने क्षेत्र में मुख्य औषधि फसल कौन कौन सी है।
3: हमारे क्षेत्र में जो मुख्य औषधि फसल हर्रा है, बहेरा है, अमरा है,
2: हाँ,
3: नीम है, महुआ है, गटायन
2: हाँ,
3: है, करंज
2: हाँ,
3: है, पलास, बकायन, सेहरुआ,
2: हाँ,
3: अमलता, स्वर्णछीरी, गिलोय, कुसुंदी, बच।
2: इन औषधियन के हम पहचान कैसे के कह पाऊ?
3: इन औषधियों के पहचान की तरह हमका जौन है अपने शास्त्र विधान आवा रहा है, क्योंकि
2: हाँ,
3: हमारे जंगली क्षेत्र हमारी सभ्यता जब चली तो जंगलन से चली,
2: हाँ, हाँ,
3: तो जंगल में रहने वाले जो लोग बाग हैं,
2: हाँ,
3: चरवाहा हैं, जंगल में वनवासी हैं, और ये शिकारी लोग जंगल में जाते हैं, और जो वैद्य लोग जंगली क्षेत्र में रहते हैं,
2: हाँ,
3: इन सबसे जब हम मिलब,
2: हाँ,
3: इनसे सबसे मिले के बाद हम, क्योंकि ये सबसे प्रथम जंगल में पहुंचे,
2: हाँ,
3: तो जंगल में जितनी जड़ी बूटी है,
2: हाँ,
3: गो पालन करते रहे तो जो जो जड़ी बूटी का ही जानवर लोग खाते रहे हैं,
2: हाँ,
3: उन्हें से वो अंदाज लगा लेते रहे, जैसे कोनो जानवर कोनो सतावर का खा ले,
2: हाँ,
3: सतावर से अंदाज लगा ले कि सतावर का खाए ऐसे कोनो नुकसान नहीं है, और जानवर खा रहा है तो एक शरीर बढ़िया पुष्टि हो रहा है, एक शरीर में दूध की मात्रा ज्यादा बन रही है, उसे अंदाज लगा ले अगर मानव जीवनों में ही इनका इस्तेमाल की जाए तो शरीर स्वस्थ हो, और शरीर स्वस्थ के साथ साथ जो है तो दुग्ध की मात्रा बढ़ी।
2: अच्छा,
3: जैसे जब नेवरा सांप लड़े लागत रहे हैं लोग वाक देखी,
2: हाँ, हाँ,
3: देखे से उनका अंदाज लगा सांप काटी से नेवरा भाग के कौन जड़ी बूटी खाई। अब व्यवहारिक तौर पर जब देखी कि कौन जड़ी बूटी खा लगे,
2: हाँ,
3: वो जड़ी बूटी का वो कहीं की देखी अरे या तो सर्पगंधा के पत्ती का खा रहा है,
2: हाँ,
3: या कि अपा मर के जड़ का खा रहा है, उसे उनका ज्ञान लग गया तो व्यवहारिक ज्ञान तैयार भा।
2: अच्छा,
3: तो ऐसे ऐसे लोगन के संपर्क में हमका लगातार रहा चाहिए। ऐसे जंगली क्षेत्र में जो वैद्य कार्य कर रहे हैं,
2: हाँ,
3: चिकित्सा के क्षेत्र में उनके संपर्क में हम लोगन कर रहे से बहुत सारी औषधि महत्व के पौधा जो जड़ी बूटी है उनका ज्ञान हम लोगन का मिला
2: था। विभाग के उपयोग मनाई अपने औषधि रूप में करा था।
3: देखिये जितने औषधि है उनके कौन न कौन भाग के,
2: हाँ,
3: मूल तक सार निर्यास नाडी स्वरस पल्लवा छारा छीरा फलम पुष्पम भस्म तैला निकंडका, बहुत सारे प्रयोग है ये उनके जड़ के उपयोग है, जड़ के तना के छाली,
2: हाँ,
3: के उपयोग है।
2: अच्छा,
3: जैसे बड़े पेड़ जो है उनके,
2: हाँ,
3: जब पेड़ के जो जड़ होती है या पेड़ के छाली होती तो उनका छाली का निकाल लिया,
2: हाँ,
3: जो छोट छोट पौधा है जड़ के उपयोग होते हैं उनके जड़ का पूरा कर पूरा निकाल लिया है ना, जैसे चित्र को वगैरह के जड़ का हम निकाल लिया।
2: अच्छा,
3: यह तरीका से जैसे बड़े पौधे नीम वगैरह के छाली के निकाले हैं, जड़ के छाली के बड़े कांड सार जो है पौधन का जो है तो उनका जड़ के तना के बीच के भाग का निकाल लिया, जैसे सेमर वगैरह है धवाई वगैरह इनके फूल का निकाल लिया, हर्रा बहेरा वाला है इनके फल का निकाल लिया, ऐसे नीम वाला है बीज का तेल का निकाल लिया, बायबिडंगे के फल का निकाल लिया, पलास है एक फूल का निकाल लिया, अपा मार्ग के जड़ और छार का जला लिया, भस्म तैल कंटक इन सब का यह तरीके से हम जो उन्हें निकाले निकाले के जब विभिन्न रोगन उपयोग करी थे तो उसे लाभ मिला।
2: अच्छा, लाभ मिला। कृषि कार्य के रूप में जब हम पचे कर बुवाई करी थे पेड़ पौधन के,
3: जी जी,
2: तो इनकर कैसन के मनाई करत है?
3: हर्रा बहरा अमरा है, एक बीज से उग जाते है।
2: अच्छा,
3: अपराजिता के बीज से उग जाते है,
2: हाँ, हाँ,
3: आम जामुन के बीज से उग जाते है,
2: हाँ,
3: फिर कुछ ऐसा पौधा है जो कंधे से उगाते हैं।
2: अच्छा,
3: जैसे अपना सताबर हो गया
2: जी,
3: सूरन हो गया,
2: हाँ,
3: बनसूरन हो गया,
2: हाँ,
3: हरदी हो गए, आदि हो गए है, ऐसे बहुत सारे जो कंध से निकले थे।
2: अच्छा,
3: तो इनके कंध कहीं जमीन में गाड़ दी तो उसे नए नए पौधा तैयार हो गए। कुछ पौधा ऐसा है जो टहनी से पैदा हो जाते हैं, जैसे चमेली है, चमेली का टहनी लगा दी वही से टहनी से उग गए, ऐसे जो है जैसे अपना कह रहे निर्गुंडी है तो बहुत सारे पौधे टहनी से लग जाते हैं।
2: अच्छा, अच्छा, और अपने यहाँ के बिंध के क्षेत्र में ये बताइए कि कौन कौन लगभग औषधि पौधा जिन्हें तैयार कर सकता है?
3: हर्रा बहरा आंवला है हाँ। इनका सरलता से तैयार किया जा सके। बाड़ी वाले भागन माही गिलो पहले से है तो हाँ। फेरो गिलो का बहुत मात्रा में क्योंकि एक उपयोग है लगावा जा सकत। सेहुरा के बाड़ी लगा दी है ओखे दूध के रोगन में उपयोग है सेहुरा के। चमेली लगा दी है ओके पत्ती का उपयोग है। मूसली लगा दी हन ताकत सताबर के बाड़ी में लगा दी हन तो सताबर ताकत के लिए बढ़िया काम करे थी।
2: हाँ हाँ।
3: बनसूरन वगैरह उसे मिल जाते हैं जंगली हाँ। प्याज वगैरह मिल जाती फिर इनका लगा ली हन तो इनका लगा गुड़ मार के बाड़ी में लगा ली हन डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करे थी।
2: मने ये विरोहन कर ला है ज्यादा किन जाय लागे कुछ जने एक जनता ही नहीं आई करत नहीं लागा ही
3: जी जी।
2: तो कौने ढंग से हम पंचे का संग्रह कह सकी थे कि जो आवे वाली पीढ़ी की नीचे या बचे रहा है हमका पंचन खातिर या और काम आवे।
3: शिक्षा के क्षेत्र में जैसे है विद्यार्थियों का हम प्रेरित करी हाँ। कि तुम अपने घर में एक एक कम से कम पौधा हर साल लगाबा।
2: अच्छा औषधि पौधा लगा
3: औषधि पौधा लगाबा। किसानन का प्रेरित करी कम से कम एक एक औषधि पौधा लगाबा
2: हाँ हाँ।
3: बाकी जब सामाजिक कार्यक्रम होते उन सामाजिक कार्यक्रमन के दौरान
2: हाँ हाँ।
3: हर आदमी का एक एक पौधा लगाबा तुम अपने शादी ब्याह में अपने काज में एक एक पौधा यादगार के रूप में हाँ लगाबा। छत्तीसगढ़ में
2: हाँ।
3: वो जो अपने बिटियन का शादी करा थी
2: हाँ।
3: तो शादी के समय में जो है महुआ के पेड़ लगवा।
2: अच्छा।
3: महुआ के पेड़ से सबसे पहले शादी करावत। अब प्रकृति के सम्मान के संस्कार के कितना अच्छा उदाहरण है महुआ।
2: महुआ
3: बहुत सारी ऐसे औषधि जिनके ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं
2: हाँ
3: है।
2: हाँ।
3: हम सुबह शाम उनके पत्ती का जिसे काल में लगा ली
2: हाँ।
3: ओखे पत्ती का सेवन करे लागन न बुखार हुई न पीलिया हुई। ऐसे जो है गुड़मार अपने बारी में लगा लिया पत्ती खाए जाए तो डायबिटीज पटा गए मुंह के छाला पटा गया अगर चमेली के पत्ती खा लिया
2: हाँ,
3: तुलसी के पौधा जैसे हम कौना सराद गर्म का जंक्शन हो गया
2: हाँ,
3: सर्दी जुकाम हो गया खांसी
2: हाँ,
3: में लग तुलसी के पत्ती के लिए दो चार पत्ती चबा ली है
2: हाँ, हाँ,
3: चाय माहे तुलसी के पत्ती है बच है कुलंजन है दो चार चीज छोट मरीज पीपर वगैरह मिला के एक वकी है काढ़ा बना ली
2: हाँ,
3: लेमन ग्रास वगैरह डाल
2: हाँ,
3: के तो उसे इतना बढ़िया जायका कि काढ़ा तैयार हुई
2: हाँ, हाँ,
3: अगर हमको बुखार सुखारी देह में दर्द होता है मुड़े में पीरा है
2: हाँ,
3: नाक में बहत है गला में खराश हो गया ही खांसी वगैरह
2: हाँ,
3: आवा लाई ये माही तुलसी के पत्ती बुखार वगैरह में तो राम बाणिया
2: कौने के कितना उत्पादन हम पंचे अपने बढ़ा सकी थे।
3: देखी उत्पादन बढ़ाना खेती हमारे पास जितना उपलब्ध स्थान है
2: हाँ हाँ।
3: कौन चीज का उत्पादन बढ़ावा खेती तो जितना चाहे उतना उत्पादन हाँ। बढ़ा ले उपयोगिता के हिसाब से
2: हाँ।
3: हमारे बिंद क्षेत्र में कहा है कि औषधि निर्माण सालन की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है
2: हाँ।
3: तो किसान कौन चीज का बोध ही
2: हाँ।
3: तो बोए के बाद जो है वो बाजार में ओखा बेचे खेती उनका मशक्कत की है पड़ी
2: हाँ।
3: ओखे बाद मेहनत के बाद उनका पैसा मिला चाहिए है ना
2: हाँ।
3: तो चूंकि मार्केट उतना ज्यादा नहीं है ऐसे किसान अगर अपने यहाँ अगल बगल जन जड़ी बूटी है
2: हाँ।
3: उन्हें का संग्रहण करे ना
2: हाँ।
3: उनका जो है औषधि में उपयोग करे और जो औषधि अपने अगल बगल है जैसे
2: हाँ।
3: कुमार के बाद जब अपने घर गांव में सफाई होती ना
2: हाँ। हाँ।
3: तो सफाई के आसपास क्या करते लोग पेड़ पौधा चूंकि जाना नहीं होके काम का जाना तो नहीं उपयोग का जाना नाम नहीं जाना।

0: तो खा काट के फेंक देते। वो हाँ। इतने महत्व के पौधा होते हैं कि उनका तुम जौन है नवान्य भी जाने द्रव्याण खिल कर मसूद नए नए पौधन का उपयोग तुम कर उनका हाँ। सुखवा के रख लिया बच बहुत सारा हो गया लेमन ग्रास बहुत सारा उनको कूट काट के उनका इकट्ठा करके रख लिया जब हमका जरूरत पड़ी काल में वगैरह जब ज्यादा हाँ। हो गए तो इकट्ठा करके रख लिया जब जरूरत पड़ी उनका सेवन कर लिया तो एमए के पौधन का जौन आने वाली पीढ़ी को चीज बची रहा है इतना ज्यादा दोहन न कर ले कि फिर उपयोग खेती सामग्री न मिल पावे ऐसे जौन है ओखे संग्रह की तरह हमका पहले से एक तो जानकारी हम रखी हर चीज के हाँ। जो जानकार लोग हैं वैद्य हैं डॉक्टर लोग हैं उनके संपर्क में रही और उनके जो भाग के उपयोग होते हैं उनका समय से संग्रहित कर ले जैसे अब देखिए यह समय जो चल रहा है हाँ। अमलतास है कंजी है हाँ। कंजी का बीजा का जो है इकट्ठा करके कूट के अगर चमड़ी में लगावे चर्म रोग खत्म हो जाते हाँ। अब बीजा वाला है नीम के बीज के इकट्ठा करते चर्म रोग में डायबिटीज में बड़ा अच्छा काम करते बकान के बीजा ऐसे चर्म रोग में बढ़िया काम करते है तो एमए का जो है अमलतास का गूदा पेट का बढ़िया साफ करे फर्स्ट क्लास के भका भक पेट साफ होते है तो एक एक ही तो के फरका इकट्ठा कर ले तो ऐसा ना चीजन के इकट्ठा करके अपने पास रख ले हाँ। जब जरूरत पड़े तो ओखर एक सीमित मात्रा में ही वैद्य के हिसाब से ओखर इस्तेमाल करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब अगर कोनो विशेष चीज छूटी रही जात हो जो उनके आवश्यक है हमारे किसान भाई को बताऊ औषधि पौधन के बारे में वो अपना उनका बता दी
0: देखिए हम अपना का बताई ये पेड़ पौधा जौन है यो देह मरपति चारण सुखस से हे तो तस्मय बदान गुरबे तरबे नमोस्त सबसे पहले तो ऐसे पेड़ पौधन का हम जौन है
1: जी नमन
0: सतसत नमन करी जौन हमारे रोग का नष्ट करे खीतिर हमारे स्वास्थ्य का बनाए रखे खीतिर हमारे उम्र का बढ़ावा खीतिर हमारे रोग के शरीर का नाश करे खीतिर बल बल बुद्धि विद्या दे खीतिर विवेक बनाए रखा खीतिर वाणी का उत्तम रखा खीतिर तरह तरह के रोग का दूर करे खीतिर ये हमका जौन है तरह तरह से जड़ चना पत्ती फूल फल बीज के द्वारा हमका उपकारित करे थे ऐसे पेड़ का हमका जौन है नमस्कार करा चाहिए इनका संरक्षित करा चाहिए इनका संपर्दित करा चाहिए ताकि हमें वाली पीढ़ी या हमहू एक उपयोग करत रही अधिक से अधिक वृक्षारोपण करा चाहिए वृक्षारोपण खीतिर सबका प्रेरित करा चाहिए।
1: डॉक्टर साहब अपना हमारे किसान भाई का औषधि पौधन के बारे में बहुत निकही जानकारी दी है अपना के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनैया भैया बहनी अबे मनई सुनत रहा भेंट वार्ता जेखर विषय रहा औषधि पौधों का विनाश विहीन दोहन वार्ता कर रहे मुनेन्द्र कुमार द्विवेदी इनके बतकहाँ चलाइन था मनसुख भाई। आइए अब सुन लीजिए मालती पांडे के गाई लोकगीत।

0: अभी मनई सुनत रहा मालती पांडे के गाई गेल्हाई, सुनैया भैया बहनी अब होत लागी चलाई के जूना। ता चलाई के पहले बता दी अपना पाचन का चौपाल कार्यक्रम के पता, तो लिखी चौपाल के चिट्ठियों द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा मध्य प्रदेश 3 है 486 001। यह पता में रही अपना पाचन के पाती के परीक्षा आज्ञा दी चौपाल के सब सुनैया भैया बहनियन का लालन भाई के राम राम, जय जवान जय किसान।
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनू सूद और आज हम वैश्विक अनिश्चितता के दौर में राष्ट्रीय हित और आर्थिक संयम विषय पर चर्चा करेंगे। और इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार सोनू, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
1: शरद जी, से पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम एक अंश सुनेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन का, जिसमें उन्होंने बताया है कि अस्थिर परिस्थितियों के दौर से हम काफी समय से गुजर रहे हैं और अभी ऐसा समय है जब जन भागीदारी के द्वारा एक नागरिक के तौर पर कर्तव्य निभाते हुए छोटे छोटे संकल्प लेकर ही हम इस स्थिति से पार पा सकते हैं। आइए सुनते हैं।
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
1: क्या कहेंगे आप, अभी जो स्थिति है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि काफी समय से एक के बाद एक क्राइसिस आ रहे हैं जिससे भारत ने बहुत मजबूती के साथ हमने उनका सामना किया है। अभी जो स्थिति है, अभी जो पश्चिम एशिया का संकट है, उससे किस तरह के स्पेसिफिक चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं हमारे देश के लिए?
2: देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल के लिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, तो 87% के करीब भारत का क्रूड ऑयल विदेश से आता है और इन सबका भुगतान पेट्रो डॉलर्स, तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि इसका क्रूड ऑयल का ज्यादातर जो व्यापार है वो पेट्रो डॉलर्स में किया जाता है। तो पेट्रो डॉलर्स की जब हम बात करते हैं सोनू, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो विदेशी मुद्रा भंडार सीधा सीधा प्रभावित होता है। इस समय जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो $700 बिलियन से नीचे आ चुका है। तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य क्या, उसके पीछे का आप अर्थशास्त्र जब लोग समझने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ यही आकाशवाणी प्रसार भारती का दायित्व है जो इस समय पूरा आकाशवाणी निभा रहा है, कि लोगों के लिए इसको सरल भाषा में समझाया जाए कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा कहा तो उसके पीछे क्या अर्थशास्त्र था। अब वो जहां भी बोल रहे थे, पहले उन्होंने हैदराबाद से बोला, फिर वडोदरा से भी बोला, तो वो इस वक्तव्य में ये तो है नहीं कि पूरी पीछे वो इकोनॉमिक्स समझाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की बात को अक्षरशः लेने का उसके पीछे अर्थशास्त्र समझना होगा। वो ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है और ये जो खाड़ी में वेस्ट एशिया में कभी हाँ कभी ना, कभी लगता है कि ट्रूस हो जाएगा, वहां पर शांति वार्ता सफल हो जाएगी, प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, अगले दिन फिर लगता है कि नहीं होगा। शुक्रवार को ऐसा लगा कि ये मामला अब सुलट जाएगा, क्योंकि 14 सूत्रीय एक प्रस्ताव भेजा गया अमेरिका के पास ईरान द्वारा, और जब पता लगा कि इसको अमेरिका ने ठुकरा दिया तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो $100 से नीचे आ गई थी पिछले वीकेंड से पहले, वो एक दफे फिर सोमवार

0: की जनता है, लोग उसमें अगर अपना योगदान देते हैं
1: जी,
0: तो इस समस्या का हम काफी हद तक समाधान पा सकते हैं। उसके पीछे जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
1: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या क्या ये छोटे छोटे उपाय सुझाए, छोटे छोटे संकल्प लेने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया, ताकि जैसे आपने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा, उसको कम से कम व्यय किया जाए।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
1: बहुत ही गूढ़ बातें हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जो उन्होंने मिशन लाइफ सुझाया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें भी ये सब बातें थी। और वोकल फॉर लोकल जो सरकार का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है, उसके तहत अगर हम देखें तो उन्होंने जो कहा है कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में वेडिंग्स करिए, ये बात भी वो पहले कर चुके हैं। लेकिन अब उन बातों का जो एक कहें कि महत्व था, वो बहुत बड़े वे में अभी सामने आ रहा है स्थिति में।
0: जी प्रधानमंत्री जी, तो देखिए शुरू से ही स्वदेशी के ऊपर जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, और छोटी छोटी बातों में हम कहते हैं। पर इस बार उसमें एक और आयाम सोनी जुड़ा
1: जी।
0: वो आयाम था विदेशी मुद्रा भंडार का। आप देखें, जैसा मैंने आपको कहा, इन सभी चीजों में जो आपको कॉमन थ्रेड जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो विदेशी मुद्रा भंडार को सेव करना था, जहां जहां हम बचत कर सकते हैं, जो गैर जरूरी चीज है। और अगर मैं सोनू आपकी इजाजत से टॉप तीन आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है आकाशवाणी के श्रोताओं को ये जानकर बहुत बड़ी उनके जानकारी में इजाफा होगा कि सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है, $140 बिलियन का हमने वित्त वर्ष 25-26 में आयात किया, लगभग $140 बिलियन का। दूसरे नंबर का क्या था, आपको हैरानी होगी सुनके, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स थे। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन बन रहे हैं, उनके छोटे छोटे कलपुर्जे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, लगभग 115 से $120 बिलियन का। ये दूसरे नंबर का आइटम था। और हैरानी की बात है कि तीसरा आइटम सोना था, जो कि $72 बिलियन पिछले साल 25-26 में हमारे यहाँ, इससे पिछले साल 58 था, उससे पिछले साल 45 था, लगातार इसका आयात हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो हमारा इंपोर्ट बिल जिसको हम कहते हैं, आयात का जो पूरा खर्च है
1: जी,
0: उसके बढ़ते हुए क्वांटम को देख के, उसके बढ़ती हुई संख्या को देख के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये तो अगर लोग अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो तभी ये बचत हो सकती है। क्योंकि ये किस लिए आता है, लोगों के इस्तेमाल के लिए सब चीजें आती है। क्रूड ऑयल आता है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, चलिए ठीक है वो बी टू बी होता है, कुछ लोग मोबाइल फोन बना के उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोना तो ऐसी चीज है जो कि 60 से 70% सोना जो हम आयात कर रहे हैं, और ये भी मैं बताना चाहूंगा सोनू कि 99% सोना भारत का आयात किया जाता है, तो उसमें 60 से 70% तो ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है, बाकी का निवेश में जाता है। तो ये ऐसी चीज है जिसके बिना लोग गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के बिना गुजारा नहीं कर सकते। हम शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम मंगाते हैं क्योंकि हमारा उस पर निर्यात भी निर्भर है, उससे

0: बाहर के सिर्फ यही कहने के लिए कि आप पुराना सोना अपना लाइए और बनवाइए, क्योंकि नया आप सोना के रेट भी बहुत बढ़ चुके हैं, खरीदना भी महंगा पड़ता है, लोग पीछे शिकायत भी कर रहे थे कि सोना हमारी पहुंच से बाहर हो गया, तो उसको रिसाइकिल किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना पहनना छोड़ दें। प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल, कल कुछ लोगों ने इस बात को थोड़ा सा गलत परसीव किया कि क्या सोना पहनना छोड़ दें, सोने का इस्तेमाल, सोना खरीदने को मना किया उन्होंने, सोना पहनने को या सोना रिसाइकल करने को उन्होंने मना नहीं किया।
1: बिल्कुल शरद जी,
0: कीमतें डबल हो चुकी है वहां पर, इसको गैस बोला जाता है, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो लोग गैसोलीन बोलते हैं, हम लीटर में नापते हैं, वो लोग उसको गैलन में नापते हैं। भारत सरकार ने, मुझे लगता है भारत की जो अच्छी आर्थिक परिस्थिति पिछले कुछ सालों में रही उस दम पर भारत इसको झेल पाया, परंतु प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इसका दबाव भारत सरकार पर, भारत के कोष पर पड़ रहा है। हम और आप जाके पेट्रोल और डीजल जब हम भरवाते हैं या हम एक नॉर्मल गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हमें लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे ही नजर आता है सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु इसके पीछे, जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे जो अर्थशास्त्र है कि इस पे जो फिस्कल लोड, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारे ऊपर राजकोषीय भार पड़ रहा है, वो भार धीरे धीरे धीरे धीरे करके कठिन होता जा रहा है। और एक अनुमान के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह सोनू, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान है, इनको लगभग 1,000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कब तक ये लॉस झेल पाएंगे? आखिर अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रही तो मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी ये कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। और इससे पहले कि ये निर्णय लेना पड़े, प्रधानमंत्री जी ने एक घर के बड़े के नाते, देश के नेता होने के नाते, उन्होंने लोगों को एक सुझाव कहिए, अपील कहिए, उसको दरख्वास्त कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, जो मर्जी आप कहिए, लोगों को करिए कि अगर बूंद बूंद करके धड़ा बढ़ता है, हर व्यक्ति योगदान देगा, अगर सरकार कह सकती है सबका साथ सबका विश्वास, तो आई थिंक लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी, और मैं तो ऐसा मानता हूं सोनू के युद्ध की जब परिस्थिति होती है ना, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से सिपाही बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति, चाहे हम लोग गन उठाए तो नहीं, युद्ध के मोर्चे पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, ना हमारा देश लड़ रहा है, पर हम इस तरीके से देश में एक आर्थिक युद्ध जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ऐसा लगता है थोपा गया है, उससे हमें हर व्यक्ति अपना अपना योगदान एक सिपाही बन के दे सकता है।
1: और इसमें अगर सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है जैसे बाकी सब देशों ने उठाया है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, वित्तीय जो हमारी स्वास्थ्य है हमारे देश का उसको बरकरार रखने के लिए, तो उसको भी जैसा आपने समझाया एक अर्थशास्त्री के तौर पर, उसे गहराई से समझना चाहिए।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए जो अर्थशास्त्र है, मुझे लगता है उसमें ना कोई राजनीति है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर देश के ऊपर भार पड़ रहा है तो लोगों पर भार पड़ रहा है, लोगों पर भार पड़ रहा है तो देश पर लाभ पड़ रहा है, इन लोगों को मिला के ही देश बनता है। तो मुझे लग रहा है अगर कल को ये कठिन निर्णय लेना भी पड़ता है तो लोग अब इसको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ आवाजें तो देखिए सोनू हमेशा ही ऐसी होती हैं जिनको कि कोई भी निर्णय पसंद नहीं आता, अच्छा निर्णय भी पसंद नहीं आता तो ये बड़ा नहीं कि तुम्हें बात अलग है।
1: इनफैक्ट अब आवाजों की बात कर रहे हैं शरद जी, तो IMF की प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि उनको ये लगता है कि सरकार को, भारतीय सरकार को अब एक स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारी फिस्कल हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में ठीक हितकारी नहीं होगा।
0: क्योंकि IMF में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं और जब वो गणना करते हैं, जब वो आकलन करते हैं, तो उनको दिखाई दे, मैंने तो आपको स्वयं ही कहा, अगर जो थोड़ा भी अर्थशास्त्र को समझता है वो व्यक्ति तो तुरंत कहेगा, बल्कि वो हैरान होगा कि अभी तक भारत सरकार ने कैसे इसको बर्दाश्त कर रखा है। और प्रधानमंत्री जी ने, आपने ध्यान दिया होगा, अगर उनके आप पूरा वक्तव्य जब सुनेंगे हम, तो उन्होंने कहा कि इससे देश पर दबाव पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि देश इससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है लोगों के लिए ये संकेत काफी है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी आके लोगों को डराएंगे तो नहीं, कि हम अब प्रधानमंत्री जी आके आंकड़े देने लगे कि इतने दिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार चलेगा, कल को फिर हमारा आगे क्या होगा, इस प्रकार की वो कभी भी बात नहीं करेंगे। ये तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि जब कोई चीज पीछे से महंगी आ रही है और हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है, मात्र 13% क्रूड हमारे देश में होता है, 87% हम बाहर से मंगाते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार तो ज्यादातर डॉलर में काम होता है, जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो खाली डॉलर से नहीं बनते हैं, उसमें जो रिजर्व बैंक के पास सोना है वो भी होता है 880 टन के आसपास, और इसमें IMF की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती है, इसको SDR बोला जाता है। तो अगर ये धीरे धीरे इसी प्रकार इरोड होता रहा, ये धीरे धीरे जाता रहा, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें, आपको याद होगा 1990-91 में भारत को एक समय ऐसा था जब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्यों? क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई थी। तो उस ओर अगर प्रधानमंत्री जी को लगा कि देश चल पड़ा है, तो इसमें लोगों को अब आगे आना चाहिए और लोगों को इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए और लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा, मैंने तो कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे 5 लीटर तेल कम भरवाने से क्या देश का विदेशी मुद्रा भंडार बच जाएगा? जी हां, बच जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो 140 करोड़ की हमारी आबादी तो कमाल करके दिखा सकती है। सुनो
1: शरद जी, अंतर्राष्ट्रीय

0: संकट के समय में राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक संयम और हरेक नागरिक का योगदान कितना आवश्यक है उस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कुदरत। जी हाँ, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, आर डी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई है और आवाज परवीन सुल्ताना की।

कार्यक्रम का अगला गीत ब्लैकमेल फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण। संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया आपकी कसम फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आपकी कसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है।

श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार

0: ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिमबोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटन्स ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत

दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हंसते जख्म फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए, अब सुनिए पंडित दिनकर कैकिनी का राग सावनी बिहाग में ख्याल गायन। तबले पर संगत की है यदुनंदन गोस्वामी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिनी का राग सावनी बिहाग में ख्याल गायन। तबले पर संगत की थी यदुनंदन गोस्वामी ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं, ये सूचना निश्चित रूप

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
3: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साईरा मुज्तबा। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG

है, इस समय रात्रि के 11:10 और 5 सेकंड हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।